0: நேர்களுக்கு வணக்கம். ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி சக ஆண்டு 1948 பாத்ரபத மாதம் 8 நாள் திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2057 ஆவணி திங்கள் 13 நாள் 2026 ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 30 தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை புலர்ந்த இன்றைய பொழுது அனைவருக்கும் நல்லதை வழங்கட்டும் என்ற வாழ்த்துக்களுடன் ஒழித்து கொண்டிருப்பது 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே நவீன் சக்சேனா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे.
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है. हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे. दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे. वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे. सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे. यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी. मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर

भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शगुन चोपड़ा के साथ आज मैं हूँ नवीन सक्सेना। शगुन, एक नई सुबह, एक नया दिन और अपने सपनों को थोड़ा और करीब लाने का एक और बेहतरीन मौका।
1: Right. नमस्कार लिसनर्स, नमस्कार नवीन, a very good morning to all our listeners.
0: कहते हैं कि हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है, बस जरूरत है उस अवसर को पहचानने की। तो आज का दिन खड़ा है तमाम ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपकी अपनी, और तो आज की सुबह एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए।
1: Sure.
0: कल जो नहीं कर पाए उसका अफसोस नहीं करेंगे, बल्कि आज जो कर सकते हैं उसे पूरे उत्साह के साथ करेंगे। मुश्किलें आएंगी, रास्ते कभी आसान नहीं होंगे, कभी थोड़े कठिन, लेकिन याद रखिए रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, मंजिल नहीं।
1: Well, that is true. So, listeners, this is the ultimate way to power your morning. We are bringing you a packed half an hour to jumpstart your Sunday with this very inspirational song. Power up your morning.
0: तो मुस्कुराइए, एक गहरी सांस लीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए और इस विश्वास के साथ कि आज का दिन मेरा है और इसे मैं बहुत बहुत बहुत बेहतर बनाऊंगा।

0: पूरे होने के अवसर पर अगले महीने की 17 तारीख से 17 अक्टूबर तक दिल्ली में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में कल हुई बैठक के दौरान ये घोषणा की गई।
1: फर्स्ट अपडेट फ्रॉम चेन्नई। IIT Madras Global Research Foundation, in partnership with the media-integrated startup platform IdeaBars, has launched Bharat Ascend, a national innovation mission designed to discover and scale entrepreneurial talent beyond traditional metropolitan hubs. So, aligning with the vision of Viksit Bharat at 2047, Professor V. Kamakoti, Director IIT Madras, highlighted that the platform democratizes opportunities to build a true product nation. And during its Delhi launch, Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship for Education, Jayant Chaudhary, congratulated the initiative and emphasized that empowering non-metro youth transforms local talent into national strength. Another update from Chennai. Students from Udumalai Galileo Science Club visited the CSIR Structural Engineering Research Centre, Chennai, on Friday as part of a science field visit organized in connection with the Science Festival, and this had 120 participants comprising 83 students and 37 teachers, and this was conducted by the club on occasion of National Science Day.
0: Rukh karte hain Mumbai ka. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने कल महाराष्ट्र सरकार के राज्यभर में 3 स्थानों पर भूख हड़ताल कर रहे आदिवासी छात्रों की सभी मांगें मान ली है। ये घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में मुंबई में हुई एक बैठक के बाद की गई। मुंबई से ही अगली खबर। मुंबई की एक विशेष अदालत ने एल्गर परिषद माओवादी संबंधों के मामले में सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वर्नॉन गोंजाल्वेस और वरवर राव को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया है। एनआईए ने आरोप लगाया था कि चारों आरोपियों ने जनवरी 2026 में मुंबई प्रेस क्लब में माओवादी विचारधारा का प्रचार करने और शहरी नक्सल आंदोलन फैलाने की योजनाओं पर विचार करने के लिए आयोजित एक सभा में भाग लेकर अपनी जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया था।
1: Heading now to Bengaluru, Karnataka Deputy Chief Minister Dr. G. Parmeshwar has highlighted some of the key activities carried out by the state government for the promotion of sports. On the occasion of National Sports Day, he has informed that para-athlete K.S. Shilpa, who won bronze medal at the Commonwealth Games held in Glasgow, was awarded a total of 20 lakh rupees as a special incentive. The government is developing 32 stadiums across the state at a cost of 36 crore rupees. And for the first time, the sports reservation was introduced in common entrance test for the professional courses. Such a good news, such a great initiative, and this secured 115 sportspersons the medical and engineering seats in the current year. Also, Karnataka Chief Secretary Dr. Shalini Rajneesh has inaugurated the India Family Business Summit organized in Bengaluru by FICCI and UK & Company. She said the MSMEs contribute significantly to the state GDP at 8.3% and they account for 45% of the manufacturing sector and state's total exports. Right.
0: Aur ab rukh karte hain Kolkata ka. पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ियों में यातायात की भीड़ कम करने के लिए कैलिम्पोंग से दार्जिलिंग तक एक रोपवे बनाने का फैसला किया है। 22 किलोमीटर लंबे इस वैकल्पिक परिवहन सेवा को शुरू करने का निर्णय मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में नबन्ना में हुई बैठक में लिया गया। पर्यटन मंत्री शंकर घोष को एक ऐसे स्थान का चयन करने का कार्य सौंपा गया है जहाँ एक साथ 1000 लोग योग सत्र आयोजित कर सकें।
1: हैदराबाद नाउ। Telangana Chief Minister Revanth Reddy has urged the Election Commission of India to extend the deadline for voters to file objections and complaints during the ongoing special intensive revision of electoral rolls. In a letter to Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar on Saturday, the Chief Minister said there are no elections due in Telangana soon and enough time should be given to complete the revision process properly. He asked that the current deadline of September 16th be extended by 4 weeks and the final voter list publication date of October 19th should also be revised.
0: आपके शहर की खबर के बाद अब आपके शहर के मौसम की बात हो जाए तो कितना अच्छा होगा शगुन। संडे का दिन है लेकिन देश के बड़े बड़े शहरों में मौसम ने अपनी अलग संडे स्पेशल फिल्म बना रखी है।
1: And we'll find that out.
0: Yes, तो अपनी चाय का कप थामिए और सुनिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और उसके बाद शगुन के साथ 3 और महानगर और फिर अपने आज दिन भर का प्लान बना लीजिए। तो दिल्ली वालों, आज बादल और सूरज के बीच थोड़ा पकड़म पकड़ाई का खेल चलेगा।

0: दोपहर में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन असली विलेन जानते हैं कौन है? ह्यूमिडिटी, उमस। दिन भर हवा बिल्कुल थमी रहेगी और पारा जंप मारकर सीधा 36 डिग्री पहुंच जाएगा। हालांकि रात को थोड़ी ठंडक महसूस होगी, 27 डिग्री, लेकिन आज दिन भर उमस आपको थोड़ा परेशान करेगी। तो बाहर निकलने से पहले एक्स्ट्रा कोटिंग ऑफ डिओड्रेंट एंड एक्स्ट्रा कोटिंग ऑफ सनस्क्रीन दोनों बहुत जरूरी है दिल्ली वालों के लिए। हमारे
1: सेंट्रल इंपेरेटिव्स। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ थंडरस्टॉर्म accompanied with lightning and the minimum temperature will be 29 degrees Celsius and the maximum temperature in Chennai will be 35 degrees Celsius.
0: Mumbai में आज कुदरत ने सीधे refresh का बटन दबा दिया है और जानते हैं आसमान में आज काले और घने बादलों का डेरा रहेगा, ऐसा मौसम विभाग कहता है। और दोपहर के वक्त थोड़ी बारिश की गारंटी भी है। तापमान 31 डिग्री और 27 डिग्री के बीच झूलता रहेगा। कोलकाता की बात की जाए,
1: यशो
0: कोलकाता के बाबू और मोशाई इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। आज आपके यहाँ भी मौसम बंगाली फिल्मों की तरह बहुत ड्रामेटिक होने वाला है। दोपहर और शाम के वक्त आसमान में जोरदार बिजली कड़कने और भारी गरज चमक के साथ तेज बारिश होती होने की संभावना है, ऐसा हम नहीं मौसम विभाग कहता है। और शगुन मौसम कहता है कि विभाग कहता है कि आज तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास बना रहेगा। तो शाम की चाय के साथ झालमुड़ी जरूर होगी वहां पर।
1: That is true and it's much the same in Bengaluru and Hyderabad as well. And the way you described it, our listeners would have visualized, right?
0: बिल्कुल।
1: So Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky. There is a possibility of light rain there. The minimum temperature will be around 20 degrees Celsius and the maximum temperature is expected to be around 29 degrees Celsius. It's not that hot, but yeah, it is hot. And Hyderabad now, it is expected to have a partly cloudy sky. Again, there is a possibility of rain or thunderstorm or dust storm, whatever happens. And the minimum temperature will be around 24 degrees Celsius in Hyderabad and the maximum temperature will be around 30 degrees Celsius.
0: तो दिन की अभी शुरुआत हुई है, मौसम का हाल हमने बता दिया है, खबरें आपके पास हैं ही, तो आप अपने प्लान कर सकते हैं दिन भर के लिए कि आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ कहाँ दिल्ली में आप जा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ये भी हम आपको बताएंगे।
1: We will tell you that, listeners, stay tuned.
0: बिल्कुल, कहाँ आप आज अपनी शाम बिता सकते हैं। बहरहाल अब पढ़ते हैं एक और पन्ना और कैलेंडर का ये पन्ना सिर्फ एक तारीख ही नहीं है बल्कि अपने आप में बहुत बड़ी कहानियां समेटे हुए हैं। शुरुआत करते हैं आज के इतिहास से।
1: Well, first we are taking our listeners way back in time. We are starting with the year 1659,
0: okay,
1: where Mughal Prince Dara Shikoh was executed by Aurangzeb.
0: मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, 1963 की बात करता हूँ। मॉस्को वाशिंगटन के बीच में एक पन्ना रेड फोन वाशिंगटन और मॉस्को को जोड़ने वाली हॉटलाइन पर पहला टेक्स्ट मैसेज आज ही के दिन 1963 में भेजा गया था। और जानते हैं ये मैसेज क्या था? The quick brown fox jumped over the lazy little dog back and that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और उस समय रूस और अमेरिका के युद्ध की परिस्थिति बन रही थी, तो इस तरह के मैसेज का इन्वेंशन किया गया था।
1: Wow, how great! It's very interesting. In 1916, Anglo-Irish explorer Sir Ernest Shackleton rescued 22 stranded endurance expedition members from Elephant Island, Antarctica, in 1928. The Independence of India League was founded to demand complete independence from British rule.
0: भारत के इतिहास के साथ साथ आज का दिन विज्ञान की दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा है। बात साल 1984 में, आज ही के दिन अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सबसे मशहूर स्पेस शटल डिस्कवरी ने पहली बार आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी और इस शटल ने इंसानों को अंतरिक्ष को समझने में बहुत मदद की थी।
1: Now let's remind you that in the year 1947, the Constituent Assembly formed the drafting committee of the Indian Constitution under Dr. B.R. Ambedkar.
0: और इतिहास में आज के दिन किन घटनाओं के लिए भी याद किया जाता है? 1806 में आपको लिए चलते हैं, न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र डेली एडवर्टाइजर आखिरी बार आज के दिन प्रकाशित किया गया था।
1: In 2009, नवीन इसरो फॉर्मली एंडेड द चंद्रयान 1 मिशन। In 2013, though, India launched its first dedicated defense satellite, GSAT-7.
0: तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से। और अब उन व्यक्तियों को, उन व्यक्तित्वों को याद करते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आज के दिन अपनी जगह बनाई है।
1: First, let me tell you about Ernest Rutherford, the physicist and chemist who was a pioneering researcher in both atomic and nuclear physics. He has been described as the father of nuclear physics. And in 1908, he was awarded the Nobel Prize.

0: in chemistry, and this was for his investigations into disintegration of the elements and the chemistry of radioactive substances. So Rutherford's discoveries, they include concept of radioactive half-life, the radioactive element radon, and the differentiation and naming of alpha and beta radiation.
1: आज जन्मदिन है जैस्मिन लंबोरिया का, भारत की महिला मुक्केबाज, और उन्होंने बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। आज उनका जन्मदिन है। आज ही जयंती है साहित्यकार भगवती चरण वर्मा की, हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार। उन्होंने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही बहुत काम किया। कवि के रूप में भगवती चरण वर्मा के रेडियो रूपक महाकाल, कर्ण और द्रौपदी, जो 1956 में त्रिपथा के नाम से भी प्रकाशित हुए, उनकी विशिष्ट कृतियां हैं।
0: सो लिसनर्स, नाउ वी विल टेल यू अबाउट जॉन मैकनली, द गिटारिस्ट, member of the Searchers band. This band was formed in 1959, who were a big part of the Mercy in the band from the Mercy sound, actually, in the early 1960s. The longest serving member of the group, touring in the band from 1955.

0: कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते, वो सिर्फ कैलेंडर की तारीखों में या कैलेंडर की पन्नों में दर्ज होने के लिए नहीं होते, वक्त बेवक्त हमें उन्हें याद भी करना चाहिए, और खासकर उस दिन जब वो या तो जयंती है उनकी या उनकी पुण्यतिथि है या उन्होंने कोई ऐसा विशेष कार्य किया है। बात 1888 की। भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक थे कन्हैयालाल दत्त। आज उनकी जयंती है। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का पूर्ण विरोध किया था। 1908 में मुजफ्फरपुर के अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ट पर हमला किया गया था और इस हमले में कन्हैयालाल दत्त, अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार ये सब पकड़े गए थे और इनके दल का एक युवक नरेन गोस्वामी अंग्रेजों का सरकारी मुखबिर बन गया था। क्रांतिकारियों ने इससे बदला लेने का निश्चय किया और अपना ये कार्य पूरा करने के बाद ही कन्हैयालाल दत्त पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई।
1: Well, we salute the brave heart. Listeners, today we are also remembering Mary Shelley. Well, English lit students, they would definitely know about her. The novelist, she wrote the Gothic novel Frankenstein and the modern Prometheus as well. She is considered an early example. This actually is considered as an early example of science fiction. So she has also been regarded as the innovator in the field of science fiction. And Mary Shelley's Frankenstein has been one of the most popular horror novels ever written, and this has remained in print since its publication in 1818, so 210 years ago today. Naveen, 210 years ago today, when she was 19 years old, Mary Shelley had the waking dream that became Frankenstein. So she spent her final years in relative seclusion, but her literary achievements and intellectual contributions, they have continued to be recognized and celebrated long after her difficult life ended. I was telling you about Mary Shelley.
0: आज का दिन खास है इसलिए क्योंकि आज है लघु उद्योग दिवस। हर साल 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। लघु उद्योग दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगार को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है, और ये हमने आपको बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में, यानी पुण्यतिथि और जयंती के बीच में इसलिए बता दिया क्योंकि अब हम कुछ ऐसे खास व्यक्तियों की बात करेंगे जिन्हें शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे।
1: Well, yes, today we are also remembering J.J. Thompson, Joseph John Thompson, and the physicist. He received 1906 Nobel Prize in Physics for the recognition of the great merits of theoretical and experimental investigations on conduction of electricity by gases. In 1897, he showed that cathode rays, they were composed

0: of previously unknown negatively charged particles, which he calculated must have bodies much smaller than the atoms. Very scientific, and a very large charge to mass ratio. The electron was the first subatomic particle to be discovered, and he is responsible for that. He is credited with finding the first evidence of isotopes as well of a stable element in 1912 as part of his exploration into the composition of the positive ions.
1: आज का दिन सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों, खेलों या फिर साहित्यकारों के लिए नहीं जुड़ा हुआ, आज का दिन जुड़ा हुआ है उस पर्सनालिटी के साथ भी, उस व्यक्तित्व के साथ भी जिसकी कलम ने बहुत कुछ लिखा है और जिसके लिखे हुए गीत, जिसकी लिखी हुई कविताएं आज भी जहन में घूमती रहती हैं। शगुन, संगीत की दुनिया में जब भी गीतकारों की चर्चा होती है तो एक नाम आता है, शंकर लाल केसरीलाल यानी शैलेंद्र। बड़े अदब से सीने की दुनिया में इनका नाम लिया जाता है। फुटपाथ पर सोने वाले बेघर बेसहारा इंसान से लेकर दौलतमंद सब उनके दीवाने थे। आज उनकी जयंती है। शैलेंद्र ने अपने जीवन में ऐसे बेहतरीन गीत लिखे कि उसमें से कौन सा अच्छा है और किसे ना पसंद करे नहीं समझ में आता।
0: Very difficult to choose.
1: और आज भी लोगों के जहन में उनके लिखे हुए गीत की सुरीली तान सुनाई देती है। शैलेंद्र का गीत, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, आज भी लोगों की जुबान पर है।
2: सब कुछ

0: If you listen to the words, they tell you a lot. And Shailendra, one of the greatest and most celebrated Hindi Urdu poets, fondly called Kavi Raj.
1: Ji.
0: King of poets by filmmaker Raj Kapoor. He was renowned, actually, he's still renowned for translating deep, complex human emotions into incredibly simple, universal language, right?
1: बिल्कुल शैलेंद्र के लिखे गीत इतने खूबसूरत होते थे शब्द इतने सटीक होते थे कि हर इंसान उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता था अब देखिए ना इसी गीत के साथ अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो पाएंगे कि ये गीत शायद आपके लिए ही लिखा गया है सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी और देखिए अगर इस गीत को पूरा पूरा सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ना कहीं आपकी लाइफ से आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ गीत है जो बहुत कुछ कहता है लेकिन अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शैलेंद्र की कलम का वो जिंदगी और उनके फलसफे को बयान करता है वो कहते हैं जीना इसी का नाम है

0: You know what I would like to share here, that I listen to this song quite regularly when I'm feeling down or I'm looking for some inspiration, because this speaks a lot.
1: तो फिर
0: volume of emotions.
1: फिर आज के कितने आपका दिन बना दिया शगुन?
0: It has truly, and yeah, I think even our listeners they would be loving it.
1: शगुन शैलेंद्र एक ऐसे गीतकार थे जिनके कलम से खुशी, गम और मोहब्बत ये सारे नगमे निकले. और शैलेंद्र ने राज कपूर के साथ मिलकर भी काम किया. 50 से 60 के दशक में उन्होंने सिनेमा में कई गीत लिखे थे. और जानते हैं राज कपूर ने उन्हें एक मुशायरे में सुना और फिल्म के लिए उनकी नज्म खरीदने की पेशकश की और उन्होंने साफ मना कर दिया. लेकिन बाद में कुछ हालात ऐसे हुए कि उन्होंने फिर से राज कपूर की फिल्म में काम करने का मौका मिला और उन्होंने बहुत सारे सुंदर गीत लिखे. लेकिन यहाँ जो मैं आपको एक ट्रिविया बता रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास तीसरी कसम पर फिल्म बनाई. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म वो बिल्कुल भी नहीं चली. लेकिन किस्मत देखिए, उनके इस दुनिया से जाने के बाद वो फिल्म सुपरहिट भी रही और उसके गीत आज भी हम गुनगुनाते हैं. और गीत है दुनिया बनाने वाली.

0: मैं और शगुन अब आपको दिल्ली की सड़कों पर लिए चलते हैं कि अगर आप अपनी दोपहर और शाम को कैसे गुजार सकते हैं वन बाय वन.
1: Well, the first one, it's happening at the Talgatora Indoor Stadium, the President's Estate Kids Concert Tour featuring Lenny Pierce. This begins at 11 a.m. and another shift is there at 4 p.m.
0: अगर आप हॉस्कास विलेज के आसपास रहेंगे दोपहर 1:15 पर या 3 बजे के आसपास तो वहाँ पे दिया मेकिंग वर्कशॉप है, आप वहाँ पे जा सकते हैं. और अगर आप पोएट्री के शौकीन और स्टोरी टेलिंग के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं द सोशल हाउस, वो भी हॉस्कास में है और वक्त रहेगा 3 बजे. नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका ग्रीन पार्क रहेगा.
1: एंड देयर इज एन आर्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू व्यू आर्ट वर्क्स वेयर द फ्लावर्स कीप देयर काउंसिल, दिस आर्ट वर्क बाय एश्वर्यन के एंड दिस विल बी देयर एट द गैलरी स्प्लैश गोल्फ कोर्स रोड गुरुग्राम 11 AM to 7 PM.
0: बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही. मुझे और शगुन को दे इजाजत. उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा. नमस्कार.

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई है।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की 4थी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ

0: मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहाँ शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
1: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
4: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र

0: शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधा कृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगे।

0: का टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
1: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत, भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ताशकंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। गुजरात में इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास रखता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दो दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलापुज़ा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री को लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने बैंक मिस्र की अमीरात स्थित शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम अमरीकी वित्त मंत्रालय की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें बैंक की शाखाओं पर ईरान के कथित गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑनलाइन के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। एशिया कप टी20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया है कि हवाई अड्डे पर उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार प्रसारित करते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल पहुंचा चुका है।

0: इस बीच भारत के 11 सदस्यीय तकनीकी दल ने कल नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
1: चिकित्सा कर्मियों और सुरंग इंजीनियरों का यह दल शुक्रवार को काठमांडू पहुंचा था। कल वे नुवाकोट जिले के त्रिशूली पहुंचे, जहां उन्होंने एक पनबिजली परियोजना से जुड़ी सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के प्रयासों में सहायता की। चिली में और लांगटांग क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण पूरा करने के बाद भारतीय दल ने सुरंग क्षेत्र के आसपास बचाव कार्य शुरू किया। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस कर्मियों का यह 82 सदस्यीय संयुक्त सुरक्षा दल कल रात से ही मलबा हटाने और सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। नेपाल के सुरक्षा बलों ने अब तक विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों से 191 श्रमिकों को बचाया है। हालांकि सुरंगों के अंदर और अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका है। विश्व दर्पण के लिए मीनाक्षी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने बैंक मिस्र की अमीरात स्थित शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। ये कदम अमरीकी वित्त मंत्रालय की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें बैंक की शाखाओं पर ईरान के कथित गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच बैंक मिस्र की UAE शाखाओं ने करीब $1.80 करोड़ के ऐसे लेन देन किए जो ईरानी गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ी 103 कंपनियों से संबंधित थे। UAE केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक की शाखाएं देश के कानूनों और नियमों के अधीन है। बैंक ने स्पष्ट किया कि जांच के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। बैंक मिस्र ने कहा है कि अमरीकी कार्रवाई केवल UAE स्थित उसकी शाखा तक सीमित है। इसका असर मिस्र और अन्य देशों में बैंक के कामकाज पर नहीं होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान विभाग ने कहा है कि अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के साथ काम कर रहे भारतीय शांति सैनिक वहां विस्थापित हुए लोगों की सहायता करना जारी रखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि UNISSA के साथ भारतीय शांति सैनिक अबेई में विस्थापित लोगों की सहायता करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता निभा रहे हैं। इस मिशन की मदद में जरूरी बुनियादी सेवाएं, शिक्षा से जुड़ी पहल और समुदाय के साथ जुड़ाव शामिल है। अबेई इलाका सूडान और दक्षिण सूडान के बीच स्थित है और इसकी देखरेख UNISFA करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बताया कि भारत ने ही सबसे पहले लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं वाली एक यूनिट तैनात की थी, जिससे हजारों लाइबेरियन महिलाएं अपनी राष्ट्रीय पुलिस में शामिल होने के लिए प्रेरित हुईं। विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने लाओस में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से बातचीत की और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने राजधानी वियतियाने में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व विद्यार्थियों से भी बातचीत की। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई। 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये संदेश है, साथ में है ताज मोहम्मद अंसारी और गुलाम साबिद। परवेज आलम का भी संदेश हम तक पहुंचा है। ग्राम बलमी सिरसिया जिला कहां से है ये हम बाद में पढ़ेंगे। और अगला संदेश है
1: ஆகாஷ்வாணி ஒலிபரப்பாக உள்ள முக்கியமான நிகழ்ச்சிக்கு காத்திருப்போம் நேயர்களே.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की

0: सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
1: The best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम
5: पर दादी आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
3: शुभ शुभ बोलो
5: क्या
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए
9: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं हैं मदद बस एक कॉल दूर है
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
10: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है

0: कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए।
1: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर

0: एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री। सर
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं। सर, सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास से एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है।
2: साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में

ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने, इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया।

काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला, उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता, इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैसालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैसालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी, बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालू जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के

हजारों पौधे लगाए, पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की

करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं।
लेकिन इसी

0: एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है, यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
2: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के धोड़रो कुसुम के मैथिली भुए ने ये दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
2: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने

0: वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया, जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி. தி நியூஸ் ரெட் பை அனுஜா குமார். Prime Minister Narendra Modi has said that the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign is gaining momentum rapidly across the country. Sharing his thoughts in the Mann Ki Baat program on Akashwani this morning, Mr. Modi asked people to come up with a powerful slogan for a drug-free India and young musicians to create songs that convey the message of a drug-free life.
1: Nasha Mukt Bharat ke liye kya aap koi powerful slogan bana sakte hain? कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है. मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले.
0: The Prime Minister said lakhs of women are gaining new strength through the PM Swanidhi Yojana. He said this aspect of women empowerment is not discussed as much as it should be. Mr. Modi said women account for approximately 46% of the beneficiaries of the PM Swanidhi Yojana. Mr. Modi said today the flight of country's daughters' dreams is soaring from the earth to the outer space. The Prime Minister said the initiative is named Mission Shakti Sat, and through it, 12,000 girl students from 108 countries are getting the opportunity to learn satellite technology in the field of innovation.
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है. इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट. इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है.
0: The Prime Minister urged people

你成金鸡冠店，人能。

0: The Prime Minister said drug addiction does not just engulf a single individual, but the entire family and society bear the consequences. He commended those who raise awareness against drugs and step forward to help individuals struggling with addiction.
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले
0: The Prime Minister said lakhs of women are gaining new strength through the PM Swanidhi Yojana. He said this aspect of women empowerment is not discussed as much as it should be. Mr. Modi said women account for approximately 46% of the beneficiaries of the PM Swanidhi Yojana.
1: PM Swanidhi Yojana ke labharthiyon mein kareeb 46% mahilaen hain. यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी फूल दिए अगरबत्ती नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया
0: The Prime Minister said cleanliness has a remarkable quality. He said when the resolve to keep a place clean becomes the people's own commitment, it completely changes the identity of that place.
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है बस फिर क्या था आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं
0: Mr. Modi said today the flight of the country's daughters' dreams is soaring from the earth to the outer space. He said India is bringing together thousands of daughters who are nurturing such dreams from across the globe. The Prime Minister said the initiative is named Mission Shakti Sat and through it 12,000 girl students from 108 countries are getting the opportunity to learn satellite technology in the field of innovation.
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है
0: Mr. Modi spoke to Krishna Sheshadri from Mumbai who has created a unique website www.bharatraja.com. By selecting any year in the website, people can easily find out which ruler ruled over which part of India at that time. He said this initiative by Mr. Krishna will help not only the history students but also the people to learn about the past in an engaging way. The Prime Minister said the month of August brought with it myriad hues of patriotism all around. He said occasions such as National Handloom Day and the anniversary of the Quit India Movement to Partition Horrors Remembrance Day make this month very special.
1: अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा

0: मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्य पथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। चलते फिरते

0: एक खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
2: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था, जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना 1 सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि ये पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से

0: मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30 நிமிடம். ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி 100.1 FM கோல்டு.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा रहे हैं। ताशकंद में आज राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान अपने शुरुआती संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश उन्नत साझेदारी के ढांचे के भीतर ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौता भी किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश घनिष्ठ समन्वय परिषद का गठन करेंगे।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: श्री मोदी को ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओलिय दर्जाली दोस्तोलिक से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों को समर्पित किया। श्री मोदी ने कहा कि वे ये सम्मान पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। मिशन शक्ति सेट और इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। श्री मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के साथ साथ प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या कम करने में भी मददगार है। उन्होंने युवाओं से रोजाना कम से कम एक घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए देने की अपील की। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वडोदरा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों की संख्या इस प्रकार है, अनुसूचित जनजाति 7, अनुसूचित जनजाति 3, अन्य पिछड़ा वर्ग 11 और ईडब्ल्यूएस वर्ग 4 पद। ये आवेदन कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग तथा गणित एवं कंप्यूटिंग विभागों में आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 15 सितंबर 2026। हार्ड कॉपी संस्थान के पते पर प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 25 सितंबर 2026। इच्छुक उम्मीदवार योग्यताओं, अनुभव, सामान्य विवरण, आवेदन पत्र तथा विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.IIIT वडोदरा

0: इच्छुक उम्मीदवार योग्यताओं, अनुभव, सामान्य विवरण, आवेदन पत्र तथा विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.IIIT vadodara.ac.in। भारतीय स्टेट बैंक में लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहयोगी, ग्राहक सहायता और विक्रय के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवार केवल एक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में रिक्तियों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती योजना के अंतर्गत उम्मीदवार केवल एक बार ही परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। किसी विशेष राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा में कुशलता प्राप्त होनी चाहिए, यानी उस भाषा में पढ़ना, लिखना, बोलना और समझने की योग्यता से युक्त होना चाहिए। चयनित स्थानीय भाषा के ज्ञान के लिए परीक्षा का आयोजन चयन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किया जाएगा। ये ऑनलाइन मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, लेकिन बैंक में शामिल होने से पहले आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्रस्तावित नहीं होगी। जो उम्मीदवार इस बात के प्रमाण के साथ 10वीं या 12वीं कक्षा की अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का अध्ययन किया है, उन्हें भाषा की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। कनिष्ठ सहयोगियों की भर्ती के लिए इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि एक ही राज्य में स्थित दो सर्किलों के बीच इंटर सर्कल स्थानांतरण की अनुमति होगी, अर्थात केवल उत्तर प्रदेश राज्य में दिल्ली सर्कल और लखनऊ सर्कल तथा केवल महाराष्ट्र राज्य में मुंबई मेट्रो सर्कल और महाराष्ट्र सर्कल की अनुमति होगी। जिन राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में ये रिक्तियां उपलब्ध हैं, वे तथा उनमें वांछित भाषा का विवरण इस प्रकार है: गुजरात गुजराती, आंध्र प्रदेश तेलुगु अथवा उर्दू, कर्नाटक कन्नड़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हिंदी, उड़ीसा उड़िया, चंडीगढ़ यूटी हिंदी अथवा पंजाबी, जम्मू एवं कश्मीर यूटी उर्दू अथवा हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी अथवा हिंदी, तमिलनाडु तमिल, तेलंगाना तेलुगु अथवा उर्दू, राजस्थान हिंदी, पश्चिम बंगाल बंगाली अथवा नेपाली, उत्तर प्रदेश हिंदी और उर्दू, महाराष्ट्र मराठी, दिल्ली हिंदी, असम असमिया बंगाली अथवा बोडो, त्रिपुरा बंगाली एवं कोकबोरोक, बिहार हिंदी अथवा उर्दू तथा झारखंड हिंदी और संथाली। स्थानीय भाषा की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय उम्मीदवार को एक भाषा का विकल्प चुनना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट sbi.co.in। संपूर्ण विवरणों के लिए बैंक की ये वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, जिस पर पूरा विज्ञापन उपलब्ध है: sbi.bank.in/web/careers/current-openings। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी लालिमा अनीजा डांग। हेलो लालिमा।
1: हेलो वैष्णवी एंड नमस्कार टू ऑल आवर फ्रेंड्स हु आर ट्यून्ड इन। इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन द अदर साइड ऑफ द माइक्रोफोन। यस, यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 FM. Yes, I'm Lalima, my co-host is Vaishnavi, and for you all, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much, much more. And all this packed tightly over the next 30 minutes, right? So we begin right away with the news headlines. And here we go. India and Uzbekistan decide to elevate bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. Both sides sign memorandum of understandings in various sectors, including mining, Ayurveda, tourism, economic and financial dialogue, higher education and environment. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent.
0: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला।
1: प्राइम मिनिस्टर हाइलाइट्स मिशन शक्ति सैट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर 12,000 गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम 108 कंट्रीज टू लर्न सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड परस्यू इनोवेशन।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है।
1: Well, death toll from flash floods in Nepal rises to 734. Nearly 2,500 people are still missing. India sends fourth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal.
0: ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी।
1: एंड डिफेंडिंग चैंपियंस जर्मनी टू टेक ऑन स्पेन इन द मेंस FIH वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप 2026 फाइनल एट वेवर बेल्जियम दिस इवनिंग। And now, friends, it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And we will be talking about Mann Ki Baat program. Yes, that's the Prime Minister's way to have a dialogue with the nation. Yes, we get to know what is going on in his mind. And very often he reflects the problems faced by the country. Not just problem, but also he comes up with extremely good examples of real examples of people who are doing great work. And that's kind of icing on the cake in the program. Well, from street side business to satellite technology, India's daughters are breaking barriers and rewriting the story of empowerment. India's women are not just becoming financially independent, friends, they are also emerging as powerful drivers of nation's growth. And Vaishnavi, let's not forget, mm-hmm. it was this very Prime Minister who believes in Matri Shakti or the women empowerment. He said, okay, let's not talk about women's empowerment, we should talk about women-led development. Bilkul. And he has walked the talk by showing that our Honourable Finance Minister is a lady who was earlier mm-hmm. the first lady Defence Minister as well. Isn't it?
0: जी बिल्कुल। और अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली महिला उद्यमियों से लेकर आसमान छूने तक का सपना देखने वाली युवा लड़कियों तक, भारत की महिलाएं आज देश की प्रगति की एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही हैं।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय

0: Well, friends, Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat program today highlighted the changing phase of women empowerment, pointing out that nearly 46% of PM Swanidhi beneficiaries are women. He also said that around 35 lakh women across the country are expanding their businesses by connecting with this scheme.
1: लालिमा, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गाजियाबाद की बबीता शर्मा और बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा का भी जिक्र किया जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जब किसी महिला का कारोबार आगे बढ़ता है तो पूरे परिवार का भविष्य भी बेहतर होता है। बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। श्री मोदी ने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण है।
2: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी

0: साथियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी, फूल दिए अगरबत्ती नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: And you know, Vaishnavi, this government started the Mudra loans, which is micro loans, you know, to people who want, it's not the big loans. And it's interesting to note that a lot many women borrowers or the loan takers are women actually who are taking Mudra loans. Okay. And they're doing extremely well because I think, let me be a little biased, we don't have any man around, that women are a little more sincere and their loan repayment, record is far better than men. At least a few years ago, it was like that. I'm sure it's still on like that now. Well, moving back to Prime Minister's Mann Ki Baat, he said that through Mission Shakti Sat, thousands of girl students from across the globe are getting an opportunity to learn satellite technology and explore the world of space and innovation.
2: श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान जमीन से अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर से ऐसी हजारों बेटियों को एक साथ ला रहा है जो ऐसे सपने देख रही है।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: मुझे याद आ रहा है वैष्णवी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सो इट वाज सरप्राइजिंगली अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज वाज टू सी टू विमेन आर्मी ऑफिसर्स हु वर एड्रेसिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस सो कॉन्फिडेंटली एंड विद सो मच मेटल। एंड इट्स रियली नाइस टू आल्सो टू नो दैट इट्स नॉट जस्ट एट दैट लेवल, ऑल्सो एट द ग्रास रूट्स लेवल द प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स टू इंश्योर विमेन एम्पावरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल्सो हैव नाउ लखपति दीदीज वेयर लैक्स ऑफ विमेन have been trained in working out drones in drone management, and they're earning lakhs of money through the year. So whether it's entrepreneurship on the ground or dreams taking flight into space, well, the message, friends, is clear, and that is, when India's women rise, India rises with them.

0: लालिमा, ये तो महिला सशक्तिकरण की बात हुई,
1: हाँ।
0: लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है मेरा कि क्या सफाई की एक छोटी सी पहल पूरे समुदाय में बड़ा बदलाव ला सकती है? अगर हम देखें तो भारत में इसका जवाब साफ तौर पर हाँ में है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा कदम कोई ले तो फिर पूरा कारवां आपके साथ आ जाता है। तो ऐसे बहुत से मैंने एग्जांपल्स देखे हैं, पीपल हु बीन टच्ड बाय द डर्ट अराउंड बट दे हैव टेकन इनिशिएटिव एंड कम फॉरवर्ड। देयर वाज दिस वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द आर्ट ऑफ लिविंग अ फ्यू इयर्स अगो, क्लीन दिल्ली ड्राइव, जब कॉमनवेल्थ गेम्स होना था, दे केम फॉरवर्ड एंड दे हेल्प द गवर्नमेंट, दे जॉइन हैंड्स विद द दिल्ली गवर्नमेंट एंड दे क्लीन द यू नो द घाट्स देमसेल्व्स, द वॉलंटियर्स। सो वी हैव हैड एग्जांपल्स people have taken that was just happening, like a choti si pehel, one step which was a big leap which turned out to be later. And yes friends, as Vaishnavi just mentioned, let's talk about what the Prime Minister talked about in Mann Ki Baat program, from river ghats in Uttar Pradesh to the eco-sensitive landscapes of Odisha and the challenging terrain of the Amarnath Yatra, people are

0: across the country are now showing that cleanliness, it's not just a government campaign, it is a collective responsibility.
1: बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम खुद ही जिम्मेदार अपने आप को नहीं महसूस करेंगे, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं हमेशा अपने साथ एक ही चीज मेंशन करेंगे कि कैरी बैग लेके चलिए. लोग अक्सर प्लास्टिक की बॉटल्स या और उस जगह को बहुत गंदा कर देते हैं, तो उसका हमें जरूर ध्यान रखना है. और श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उन प्रेरणादायक लोगों का जिक्र किया जो स्वच्छता के संकल्प को हकीकत में बदल रहे हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया जिन्होंने लोगों को सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए प्रेरित किया.
2: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं. उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है. बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े. धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई. ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं.
0: Wow, how inspiring.
1: बिल्कुल. और लीना, अगर हम देखें तो त्योहारों का मौसम बस आने ही वाला है और भारत रंगों, परंपराओं और आपसी मेलजोल के साथ मनाने के लिए तैयार हो रहा है.
0: हाँ बिल्कुल, जश्न मनाने को तैयार हो रहा है. यस वैष्णवी एंड फ्रेंड्स, फ्रॉम जन्माष्टमी, गणपति पूजा एंड विश्वकर्मा पूजा टू द मच अवेटेड दिवाली, द सेलिब्रेशंस आर ऑल सेट टू ब्रिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टुगेदर. बट दिस फेस्टिव स्पिरिट कैन ऑल्सो बिकम अ सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग बिगर, एंड दैट इज ऑफ इंडियाज own talent, own craftsmanship and beautiful handmade products.
1: लालिमा, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हर समय वोकल फॉर लोकल के बारे में बात करते ही हैं, और वो सच में कितने अच्छा इनिशिएटिव है. इस बार भी उन्होंने उसी बात का जिक्र किया और लोगों से वोकल फॉर लोकल अपनाने का आग्रह किया है और याद दिला है कि इसका मतलब सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है.
0: एग्जैक्टली, एंड आई कैन से प्राउडली फ्रेंड्स दैट व्हेन आई हैव टू गिफ्ट ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू कॉन्टैक्ट माई लोकल आर्टिजन्स, हैंड क्राफ्ट पीपल, हैंड क्राफ्ट्समैन, या फिर यू नो जो वीवर्स होते हैं उनसे मैं कुछ लेती हूँ जो लोकल होते हैं जहाँ पे भी आप रहते हो. और अब तो इतने, पहले हम एक कॉटेज एम्पोरियम देखते थे वैष्णवी, अब तो इतनी जगह आपको बिकॉज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, आपको दिल्ली हाट मिलता है दिल्ली में, 3 दिल्ली हाट तो दिल्ली में ही है, और बहुत सारे ऐसे एम्पोरियम है, एक ट्राइब्स एक है गवर्नमेंट की खोली हुई, जहाँ पर आपको देश भर के लोकल क्राफ्ट्समैन की बनी हुई चीजें, दे आर वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. एंड समटाइम्स यू नो आई ऑलवेज से वैष्णवी, यू कैन कॉल इट अ जोक और व्हाटएवर, दैट इफ यू गो to a branded shop, the same shirt, same design is available at 10 at the same branded shop all over the country, all over the world. But when you go to buy something from something which has been made by a craftsman, it's that one unique of it's one of a kind piece. Bilkul. So you possess something which has been made with lots of love, with lots of talent, and it's unique by itself. And so friends, I think I strongly advocate and endorse what the Prime Minister says, that now that the festival season is coming, please choose local, vocal for local, that is local products as gifts.
2: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा. और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है. हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो. भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा.
1: बिल्कुल. तो श्रोताओं, जब त्योहारों की रोशनी चारों ओर जगमगाने लगे और उत्सव का माहौल छा जाए, आइए इस बार भारत का उत्सव मनाएं भारतीय हाथों की मेहनत, भारतीय कारीगरी और भारतीय उत्पादों के साथ.

Well, it's the Western world. Ask the Western world, the developed Western world, ask them how important and how they value our craftsmanship. वहाँ कोई handicrafts बहुत कम है, तो उन्हें हमारी craftsmanship की बहुत बहुत कदर है. हम थोड़ी सी कदर कभी कभी कम करते हैं क्योंकि हमारे आसपास बहुत है.

0: The procession featured palliodams, traditional snake boards, accompanied by vanjipattu and muthukudas. Vanjipattu is a traditional song sung by the oarsmen, while muthukudas are colorful traditional umbrellas. The boats moved in group along the Pamba River, creating a colorful and festive spectacle. Tableaus showcasing traditional Kerala art forms also form part of the procession. A helicopter display was another attraction. The competitive boat race is now underway with 51 palliodams taking part, 35 from the first batch and 16 from the second batch. Special prizes will be presented for the best singing and rowing performances as well as for the best traditional attire and presentation. The famous Valla Sadhya, the traditional feast, mainly prepared for the oarsmen of the palliodams, are also underway at Aranmula. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: और अब केरला से चलते हैं गुजरात की ओर. गुजरात का सरहदी जिला बनासकांठा ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. हालांकि इस बार वजह दूध नहीं बल्कि देश में पहली बार शुरू की गई ग्रामीण भारत टैक्सी सेवा है. आइए सुनते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट.
2: बनासकांठा जिले के धानेरा तालुका के विंछीवाड़ी में हाल ही में बनास डेयरी, सुजुकी मोटर्स एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के संयुक्त उपक्रम से बनास बायो CNG मॉडल प्लांट का लोकार्पण किया गया. यह कार्यक्रम इसलिए विशेष था क्योंकि इसी दौरान बनास की धरती से देश में पहली बार ग्रामीण स्तर पर भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत भी की गई. इस अवसर पर 9 भारत टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. चालक स्वयं वाहन का मालिक बने इस सहकारी मॉडल के साथ देश में पहली बार ग्रामीण स्तर पर शुरू की गई इस पहल से स्थानीय युवाओं को रोजगार का एक नया अवसर मिलेगा. इस अवसर पर गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी ने गुजरात सरकार द्वारा पशुपालक महिलाओं के लिए 20 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त योजना एवं बजट में CNG पंपों के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना की. कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने सुजुकी के सहयोग से भारत टैक्सी जैसी पहल को ऐतिहासिक बताया. इसके साथ ही उन्होंने गोबर से गौरव के माध्यम से देश को सर्कुलर इकोनॉमी का सफल मॉडल देने वाली बनास डेयरी की प्रशंसा की. परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से प्रवेश अड़ियेचा.
3: So now we know that when you talk about cooperatives, it's not just limited to self-help groups. It's also now expanded to Bharat taxis. So even if in Delhi or metros, some places, I think, apart from Delhi, if you want to hire taxi, hire means if you want to take kuch hum international apps ko download karte hain, Bharat taxi ko download kijiye aur apne desh ki indigenous taxi app ko use kijiye and apna desh, be proud of it. From Gujarat, moving on to Odisha, it comes September, it's beautiful weather, and think of festivals. State of Odisha is organizing Odisha Parab in different parts of the country. Let's hear.
4: To take the essence of Odisha beyond its borders and connect with audiences across the country, the initiative has reached cities including Guwahati, Ahmedabad, Bengaluru, and most recently Varanasi, creating opportunities for people in different parts of the country to discover Odisha's rich heritage and cultural traditions. From ancient temples and Buddhist heritage sites to pristine beaches, wildlife sanctuaries, and ecotourism destinations, Odisha Parab brings the state's diverse tourism experiences to the doorstep of new audiences. The celebrations also bring alive Odisha's living traditions through handicrafts, handlooms, cuisine, music, dance, and other performing arts, while providing artists and artisans an opportunity to connect with wider audiences. For the Odia community living away from home, the celebrations offer a connection to familiar traditions and memories. For others, they open a window to discover a culture shaped by centuries of history, rich craftsmanship, and a deep bond with nature. With plans to take Odisha Parab

0: At his initiation to help the poor students.
1: In 1954, when language clashes broke out in southern Odisha, Acharya led peace squads in the troubled areas. He also joined the cause of downtrodden communities, often shocking orthodox communities, by sitting down to a meal with lower caste communities.
2: And now let's talk about people for whom today's date is very important in some way or the other. Let's talk about Kanhaiya Lal Datta, born on this day in 1888. He was a nationalist involved in the Indian independence movement and he belonged to the Jugantar group. He was born in Chandanagar, West Bengal, and he, along with Satyendranath Bose, was convicted by the British for the assassination of Narendranath Goswami, who had turned an approver for the British in the jail hospital of Alipur Central Jail on the 31st of August 1908, and he was executed in November the same year.
3: हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले इन पंक्तियों में जीवन को अपनी शर्तों पर जीने और हर पड़ाव को सहजता से स्वीकार करने का भाव दिखाई देता है इन पंक्तियों के रचनाकार थे हिंदी साहित्य के ऐसे लेखक जिनकी कलम ने प्रेम नैतिकता समाज और मनुष्य के अंतर्द्वंद्व को बेहतर बेहद गहराई से समझा भगवती चरण वर्मा 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर में जन्मे भगवती चरण वर्मा ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता से की लेकिन आगे चलकर हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई उनके सबसे चर्चित उपन्यास चित्रलेखा है उनकी महत्वपूर्ण कृति भोले बिसरे चित्र के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जबकि हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और अब जिन सवालों और मानवीय भावनाओं को भगवती चरण वर्मा ने अपनी रचनाओं में शब्द दिए उन्हीं पर उनकी आवाज में सुनिए कुछ विचार प्रसार भारती आर्काइव से
4: मैं तो कविता फिर कहानी लेखक बना और बड़े ताज्जुब की बात है कि हिंदी में कहानी लेखकों में जो प्रमुख नाम है वो विशंभरनाथ कौशिक
3: हिंदी साहित्य में हास्य को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को देखने का एक माध्यम बनाने वाले लेखकों में जीपी श्रीवास्तव यानी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का नाम खास है ऐसे समय में जब हिंदी साहित्य में गंभीर विषयों को बोलबाला था गंगा बाबू ने हास्य और व्यंग्य को अपनी पहचान बनाया उनकी रचनाओं में लंबी दाढ़ी दिल जले की आह और लतखोरी लाल जैसी कृतियां चर्चित रहीं
2: Today we celebrate the birthday of Jasmine Lamboria. She was born on this day, 2001. She's an Indian boxer, as we all know. She's a Naib Subedar in the Indian Army, represented India in women's 57 kilogram event at 2024 Summer Olympics, won gold medals at 2025 World Boxing Championship and at 2025 World Boxing Cup in the 57 kilogram category. And we also talk about Shailendra today. As you all know, he's a Hindi Urdu poet, lyricist and film producer. He was born on this day in 1923, regarded as one of the greatest and most celebrated lyricists of the Indian film industry. His association with Raj Kapoor, singer Mukesh and composer Deo Shankar Jaikishan is well known and he wrote four successful Hindi film songs in 1950s, also wrote songs in Bhojpuri language. Let's listen to a medley of his songs written by him.

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை இ தேவராஜ் அவர்களின் புல்லாங்குழல் இசை கேட்டீர்கள். பி அக்ஷயா அவர்கள் வயலின், கே பி அர்ஜுன் சுந்தரம் அவர்கள் மிருதங்கம். இதே அலைவரிசையில் நாளைய அரங்கிசையில் யு ஜெயவிக்னேஸ்வர் அவர்களின் மாண்டலின் இசை கேட்கலாம். பி அனந்தகிருஷ்ணன் அவர்கள் வயலின், வி எஸ் ராகவன் அவர்கள் மிருதங்கம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடரும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया. ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है. राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की. प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है. आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे. हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर

0: चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
0: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वहीं 28 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் மாலை 6:05. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்டு. இந்த அலைவரிசையில் இனி வர இருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பு. இந்த அறிவிப்பினை தொடர்ந்து 6:10 விஸ்லேஷன், 6:30 இரவு 11:10 மார்க்கெட் மந்த்ரா, 7:10 கனிந்த வாழ்வு நிகழ்ச்சியில் ஓய்வு பெற்ற மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் ஆர் கணேசநேரு அவர்களுடன் நேர்முகம். தொடர்ந்து முதியோர்களுக்கு ஏற்படும் எலும்பு தேய்மானம் குறித்து எலும்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் எம் மாரிமுத்து அவர்கள் தரும் தகவல்கள். அமைப்பு ஆர் வெங்கடேஷ். 7:50 செய்தி கதம்பம். 8:00 மனதின் குரல். பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்று காலை வானொலி வழி தம் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட மன் கி பாத் உரையின் தமிழாக்கம் மனதின் குரல் இடம்பெறும். இதனை தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வானொலி நிலையங்களின் அனைத்து அலைவரிசைகள் DTH மற்றும் DRM ஆகிய அலைவரிசைகளிலும் கேட்கலாம். 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 அனுகுஞ்ச், 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்டு நியூஸ் நிகழ்ச்சிகள் டெல்லி அஞ்சல், 10:30 மேற்கத்திய இசை, 11:40 திரைகானம். இனி இதே அலைவரிசையில் நாளை இடம்பெற இருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பு. நள்ளிரவுக்கு பின்

0: देश फसल खराब होने की स्थिति में किसान को आर्थिक सहायता देना और उसकी आय को स्थिर बनाए रखने में सहायता करना है। इस योजना को राज्यों, बीमा कंपनियों, बैंकों और दूसरी संबंधित संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाता है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताएं क्या हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होती है।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एक प्रमुख विशेषता इसका कम प्रीमियम है। खरीफ की खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए किसान को अधिकतम 2% प्रीमियम देना होता है। रबी की खाद्यान्न और तिलहन की फसलों के लिए यह 1.5% है। वहीं सालाना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम प्रीमियम 5% है। बाकी प्रीमियम सरकार की ओर से दिया जाता है। योजना में फसल को अलग अलग चरणों में होने वाले नुकसान से सुरक्षा देने का प्रावधान है। खड़ी फसल को सूखा, बाढ़, जल भराव, चक्रवात, ओलावृष्टि, बिजली गिरने, कीट और बीमारियों जैसी प्राकृतिक और दूसरे गैर रोकथाम योग्य कारणों से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। कई बार मौसम की खराब स्थिति के कारण किसान फसल की बुआई नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में यदि संबंधित क्षेत्र में अधिकांश बीमित किसान फसल की बुआई नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बीमा राशि के अधिकतम 25% तक दावा मिल सकता है। फसल कटने के बाद कुछ जोखिमों का प्रावधान है। खेत में काट कर सुखाने के लिए रखी गई फसल को चक्रवात और बेमौसम बारिश जैसी निर्धारित परिस्थितियों में कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों तक बीमा सुरक्षा मिलती है। अब सवाल है कि योजना का लाभ कौन ले सकता है। अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान जिनका उस फसल में बीमा योग्य हित है योजना के तहत पात्र हो सकते हैं। इसमें किसान के साथ किराएदार किसान और बटाईदार किसान भी शामिल हैं, बशर्ते वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। किसान के पास जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज या राज्य के नियमों के अनुसार मान्य भूमि अधिकार या खेती से जुड़ा प्रमाण होना चाहिए। इसके साथ ही किसान को तय सीमा के भीतर बीमा के लिए आवेदन करना होता है और संबंधित फसल का प्रीमियम भी समय पर जमा होना जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। किसान पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण करके आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान नहीं है वे कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC और संबंधित बैंक या दूसरी अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस के जरिए अपने आवेदन की स्थिति देख सकता है। हालांकि योजना में कुछ सीमाएं भी हैं। गैर अधिसूचित क्षेत्रों की फसलें आम तौर पर इसके दायरे में नहीं आती। इसी तरह निर्धारित फसल अवधि के बाहर होने वाले नुकसान और जानबूझकर की गई लापरवाही या रोकथाम योग्य कारणों से हुए नुकसान को सामान्य तौर पर कवर नहीं किया जाता है।
0: श्रोताओं, अब तक हमने समझा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसमें किसान को कितना प्रीमियम देना होता है, किन परिस्थितियों में फसल को बीमा सुरक्षा मिलती है और किसान किस तरह इसमें शामिल हो सकता है। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति और इसे मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की भागीदारी और बीमा कवरेज लगातार बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में योजना के तहत 92 करोड़ से अधिक किसान आवेदन बीमित किए गए हैं और 26 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों पर दावों का भुगतान किया जा चुका है। इन दावों की कुल राशि 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक है। योजना का लाभ किराएदार और बटाईदार किसानों तक भी पहुंच रहा है। वर्ष 2018 से अब तक ऐसे 1,44,00,000 से अधिक किसान योजना में शामिल हो चुके हैं। राज्यों की भागीदारी में भी बदलाव देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश ने खरीफ 2022 में योजना में वापसी की, झारखंड खरीफ 2024 से फिर योजना में शामिल हुआ और पश्चिम बंगाल ने खरीफ 2026 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर अपनाया है। बिहार ने भी रबी 2026-27 से योजना लागू करने का फैसला किया है। दूसरी ओर कुछ राज्यों में योजना लागू करने के तरीके में बदलाव के कारण किसानों के नामांकन में उतार चढ़ाव भी आया है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे प्रमुख कृषि राज्यों में खरीफ 2025 के दौरान किसान नामांकन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल एक साझा डिजिटल मंच के रूप में काम करता है। इसके जरिए किसान नामांकन, बीमा से जुड़ी जानकारी, दावों की गणना और भुगतान जैसी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया गया है। जमीन के रिकॉर्ड को इस पोर्टल से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इससे यह जांचने में मदद मिलती है कि किसान की कितनी जमीन और कौन सा क्षेत्र

0: के तहत शामिल है। कई राज्यों में लगभग 85% बीमित क्षेत्र का सत्यापन डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के जरिए किया जा रहा है। डिजी क्लेम के जरिए दावों की गणना और भुगतान की प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाया गया है। यह पूरी प्रक्रिया को किसान के स्तर तक ट्रैक करने में मदद करता है। वर्ष 2022 से शुरू इस व्यवस्था के जरिए अब तक 55,000 करोड़ रुपए से अधिक दावों की गणना और भुगतान किया जा चुका है। तकनीक के इस्तेमाल को आगे बढ़ाते हुए यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यानी यस टेक शुरू किया गया है। इसमें उपग्रह और दूसरी तकनीकों की मदद से फसल की उपज का अनुमान लगाया जाता है। इससे फसल नुकसान का आकलन अधिक सटीक बनाने में मदद मिलती है। इसी तरह वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम के जरिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम से जुड़ा आंकड़ा जुटाया जाता है। इसके लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। यह जानकारी फसल बीमा के साथ साथ मौसम की निगरानी और आपदा प्रबंधन में भी उपयोगी है। क्रॉपिक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शुरू की गई AI आधारित डिजिटल पहल है। इसके जरिए फसलों की जियो टैग की गई तस्वीरें लेकर फसल की स्थिति की निगरानी की जाती है। भविष्य में इसका इस्तेमाल फसल नुकसान और उपज का आकलन करने में भी किया जाना है। किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। इसका टोल फ्री नंबर 1-4-4-4-7 है। जनवरी 2024 में शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत अब तक 26,12,000 से अधिक किसानों की शिकायतों का समाधान किया जा चुका है और समाधान की दर 99.66% रही है। इसके अलावा गैर ऋणी किसानों के घर तक बीमा सुविधा पहुंचाने के लिए AIDE और स्थानीय स्तर पर फसल नुकसान दर्ज करने के लिए क्रॉप लॉस असेसमेंट ऐप यानी क्लैप जैसी व्यवस्थाएं भी विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ सरकार रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी लागू कर रही है। इसमें वास्तविक फसल नुकसान के बजाय मौसम से जुड़े आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा तय किया जाता है। यह योजना खास तौर पर फल, सब्जियों और बागवानी जैसी फसलों के लिए उपयोगी है। इन पहलों का उद्देश्य सीधा है, किसान का नामांकन आसान हो, फसल का आकलन अधिक सही तरीके से हो, दावों का भुगतान समय पर हो और शिकायतों का समाधान तेजी से किया जा सके। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बड़ी संख्या में किसानों और खेती के क्षेत्र को बीमा सुरक्षा से जोड़ा है। कम प्रीमियम के कारण किसान के लिए बीमा लेना अपेक्षाकृत आसान बनाया गया है, जबकि प्राकृतिक आपदाओं और दूसरे जोखिमों से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक उद्देश्य है फसल के जोखिम को कम करना, किसान की आय को सहारा देना और नुकसान के बाद भी खेती की निरंतरता बनाए रखना। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई।

இயம் ஆகாஷவாணி சம்பிரதி வார்த்தாஹ ஸ்ருயந்தாம் பிரவாசகஹ ஜதின சர்மா. ஆதவ் முக்கிய வார்த்தாஹ. भारत उज्बेकिस्तानयो मध्ये खनन आयुर्वेद पर्यटन रणनीतिक सहभागितां समेत्य बहुषु क्षेत्रेषु संधिपत्राणि हस्ताक्षरं गतानि. मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना पीएम स्वनिधि योजनया महिला सशक्तिकरणं प्रतिपादितं. उक्तञ्च पञ्चत्रिंशल्लक्षाधिकाः महिलाः अनया लाभान्विताः. प्रधानमन्त्रिणा मिशन शक्ति सेट इत्याख्यः उपक्रमः प्रतिपादितः. अष्टोत्तरशतदेशानां 12,000 छात्राः उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञास्यन्ति, नूतनोन्मेषं च साधयिष्यन्ति. मादकमुक्त भारताभियानाय घोषवाक्यानि विषय सामग्रीं च निर्मातुं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना युवानः अभ्यर्थिताः. अभियानं देशे द्रुतगत्या प्रवर्धते इत्यपि अमुना प्रोदीरितम्. नेपालदेशे भीष्मजलाप्लावेन मृतानां संख्या 68,700 सम्प्राप्ता, प्रायः 25%

0: जनाः अद्यापि विलुप्ताः। भारतेन 11 टन्मितां मानवीय सहायता सामग्रीमादाय 4th विमानं नेपालाय प्रेषितम्। अपि च UAE देशस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे 20-20 एशिया चषक स्पर्धायाम् अद्य सायं भारत थाईलैंड दले परस्परं सम्मुखी भविष्यतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन 30-2000 वर्षं यावत् 5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितं, यथि साम्प्रतिक व्यापारस्य 5 गुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्मानमपि अलभत। इदं सम्मानं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंदनगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोयेवः प्रधानमंत्रिणे नरेंद्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्मानः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढसम्बन्धेभ्यः समर्पितः। श्रीमोदी अवोचत् यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवम् अनुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापकरणनीतिकसंरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायकलक्ष्यनिर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरवार्तायां श्रीमोदी अवोचत यत् देशद्वयं निजसम्बन्धान् व्यापकरणनीतिकसहभागितास्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्तस्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणा समन्वयसमितेः घटना विधास्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत यत् विकसितभारताय मादकमुक्तयुवाभियानं कृत्स्नेहि देशे द्रुतगत्या संवर्धते। अद्य प्रातः आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे स्वविचारान् उपस्थापयन् श्रीमोदी सन्तोषं प्राकटयत् यत् व्यसनमुक्तयुवकानां मादकमुक्तभारतस्य च लक्ष्ययुक्तम् इदम् अभियानं केवलम् औपचारिकं नास्ति, अपि तु बहवः जनाः विशेषतः युवानः महत्या संख्यया अस्मिन् संयुज्यन्ते।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग विशेषकर हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
0: प्रधानमन्त्री न्यवेदयत् यत् मादकद्रव्यव्यसनं केवलं एकं जनं न ग्रसते, अपि तु समग्रः परिवारः समाजश्च अस्य दुष्परिणामान् भुङ्क्ते। सः तेषां सर्वेषां भूरिशः प्रशंसां कृतवान् ये मादकविरोधि जागरूकतां प्रसारयन्ति अथ च मादकद्रव्येन पीडितानां सहायतायै अग्रे आगच्छन्ति।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् पीएम स्वनिधि योजना माध्यमेन लक्षशः महिलाः नूतनं सामर्थ्यं प्राप्नुवन्ति। सः अकथयत् यत् महिला सशक्तिकरणस्य अस्मिन् उपक्रमे यावती चर्चा भवेत् तावती न दृश्यते। श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् पीएम स्वनिधि योजनायाः लाभार्थिषु प्रायः 46% महिलाः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति।

0: प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् स्वच्छतायां बहवो गुणाः भवन्ति। सः अवदत् यत् यदा कस्यचित् स्थानस्य स्वच्छता संकल्पः जनसामान्यस्य स्वकीय संकल्पः भवति तदा सः तस्य स्थानस्य समग्र स्वरूपमेव परिवर्तयति।
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: श्री मोदी अवदत् यत् अद्य देशस्य कन्यानां स्वप्नाः भूमेः आरभ्य अन्तरिक्षं यावत् विस्तीर्णाः। सः असूचयत् यत् भारतं समग्र

0: युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: श्री मोदी अवदत् यत् अद्य देशस्य कन्यानां स्वप्नाः भूमेः आरभ्य अन्तरिक्षं यावत् विस्तीर्णाः। सः असूचयत् यत् भारतं समग्र विश्वस्मात् सहस्रशः कन्याः एकत्र आनयति, याः एतादृशान् स्वप्नान् पश्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अस्य उपक्रमस्य नाम मिशन शक्ति सेट् इत्यस्ति, येन 80 द्वादशसहस्रं छात्राः नूतनोन्मेषक्षेत्रे उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञातुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री मुम्बईनगरस्थेन कृष्णशेषाद्रि इत्यमुना सह सम्भाषणम् अकरोत्, येन www.bharatrajya.com इति एकं विशिष्टं वेबफलकं निर्मितम्। अनेन वेबफलकेन कस्यापि वर्षस्य चयनेन जनाः सहजतया ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासकस्य शासनमासीत्। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे वन्दे मातरम् इति गीतस्य 150वीं जयन्ती वर्तते, अतः इदं वर्षम् इतोप्यधिकं विशिष्टं महत्त्वमावहति।
0: तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे।
1: मध्य नेपाले आकस्मिक जल प्रलयेन मृतानां संख्या समेध्य 68-70 संवृत्ता, अद्यापि मृतवपुंसि सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने साहाय्योद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। महिलानां एशिया चषक 20-20 क्रिकेट चषक श्रृंखलायां अद्य भारतीय महिला दलं थाईलैंड दलेन सह क्रीडिष्यति। इयं स्पर्धा दुबई नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण रात्रौ 8:30 स्पर्धा आरप्स्यते। दलनायिकायाः हरमनप्रीत कौर इत्यस्याः नेतृत्वे भारतं प्रतियोगितायां स्वस्य अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। इति वार्ताः।

0: Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra. Today, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjit Kaur, along with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: इंडिया एंड उज्बेकिस्तान एलिवेट टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सेट बायलैटरल ट्रेड टारगेट ऑफ $5 billion बाय 2030। Foreign portfolio investors infuse over 30,000 crore rupees into Indian equities in August so far. And in bullion market, gold and silver prices snap 3-week rising streak.

भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला। 2030 तक $5 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में 3 सप्ताह पुरानी तेजी टूटी।

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodh ji, I see our first caller has already connected with us. Welcome. From Uttar Pradesh. Vivek ji, swagat hai aapka, sawal poochein.
1: मार्केट गंगा टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार
0: जी. नमस्कार.
1: मैं एसआईपी के द्वारा एटीएम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ 8 years से और मेरे पास एक लमसम अमाउंट है और मैं इसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एसटीपी के माध्यम से 12 किस्तों में 12 महीनों में मैं इसे स्प्रेड कर लगाना चाहता हूँ और मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के रूप में इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. इसमें मैं एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक वैल्यू फंड और एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहता हूँ. कृपया मुझे बताइए मैं इसमें कितना कितना पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज रखूँ और जो अदर है मिड कैप स्मॉल कैप इसमें कितना रेशो रखूँ. अलग अलग मुझे थोड़ा गाइड करें कि मुझे कितना अमाउंट स्प्रेड कर कितना परसेंटेज इसमें लगाना चाहिए और मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहता हूँ 7 से 10 years के लिए.
2: जी, तो देखिए कोई इसका बहुत डिफाइंड फार्मूला नहीं है लेकिन आपने बताया कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप जैसे एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक वैल्यू फंड का आप चुनाव करने में इच्छुक हैं. थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर आपको इन फंड से भी मिल सकता है और उसके अलावा अगर आप 15% अपना पैसा एक डिफाइंड फोकस्ड मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड में अगर लगाते हैं और बचा हुआ पैसा अगर आप अपना फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप इन टाइप की कैटेगरीज में लगाते हैं तो देखिए मोटा मोटा एसेट एलोकेशन कुछ ऐसा रहेगा. आपका 15% डेडिकेटेड मिड कैप और स्मॉल कैप आपके इन फंड्स से मिलेगा और फ्लेक्सी कैप और जो मल्टी कैप फंड्स हैं इनमें भी आप लगाएंगे, इनसे भी आपका कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपोनेंट बनेगा. तो करीब 45-50% शायद आपका पैसा इन छोटी कंपनीज के शेयर्स में निवेशित रहेगा, बचा हुआ लार्ज कैप में. तो आई थिंक एक फेयरली एग्रेसिव पोर्टफोलियो रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए.
0: All right, after that advice, let's take a deep dive into the big news of the day. India and Uzbekistan today announced to elevate their mutual strategic partnership to comprehensive strategic partnership level. The Central Asian country also agreed to establish a framework for long-term supply of uranium to India and discuss the sites of the mining for rare earth minerals. Our correspondent reports that on the second day of his visit, Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with President Shavkat Mirziyoyev of Uzbekistan and both sides reviewed the entire spectrum of bilateral relations. Both countries signed 11 memoranda of understanding in various sectors including mining, economic and financial dialogue and tourism among others.
3: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं. इस वर्ष विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है. हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है. अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है. इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे.
0: The talks between both sides focused on expanding cooperation in the areas of trade and investment, agriculture, pharmaceuticals and digital public infrastructure, among others. An important commercial agreement was done to enable UPI apps of India to scan national QR, UZQR for making merchant payments in Uzbekistan. Ashutosh, before we go any further with the more news in our program today, we've heard some positive headlines today. We've spoken about this comprehensive strategic partnership. We

0: spoke about the FIIs infusing funds. So how do you view this in the landscape of mutual fund investment for a common investor?
1: So the broad undercurrent that we should look at is that the more opportunities Indian businesses have to expand their businesses, increase their exports to different countries, bilateral agreements like these help open up market access for Indian businesses across the globe. Indian companies may not, remain dependent on one or two economies or one or two geographies, and that is the whole idea, to broad base the business opportunities for Indian businesses, and agreements like these contribute to that. And a pass-through effect of this would land on the retail investors, because as businesses grow, they become more profitable, their values appreciate, their stock price appreciate, and in the long term, equity investors end up being the beneficiaries in an indirect way. So clearly there is a positivity, and a long-term impact should be positive for retail investors as well.
2: Sarabjit ne abhi ab videshon ki baat shuru kar di hai, aur जब चर्चा इसी पर है तो मुझे अभी कुछ समय पहले की बातें भी याद आने लगी, जब हम बात कर रहे थे कि विदेशी फंड्स में हम कैसे निवेश करें, और कई श्रोता इस पर अक्सर सवाल पूछते रहते हैं, और समय समय पर जब मौका मिलता है, जब खुलता है कहीं किसी फंड में निवेश का मौका मिलता है, तब कुछ लोग बहुत प्रॉम्प्टली उसमें निवेश भी कर रहे होते हैं. आशुतोष, अगर जब कभी ऐसा अवसर आता है, आरबीआई की लिमिट कहीं पर मिलती है हमें, जब निवेश करने का मौका आता है, तो एक आम निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत किसी ऐसे बाज़ार में, अमेरिका के या यूरोप के या एशिया के दूसरे बाज़ारों में एक्सपोजर वाले फंड्स में लगाना चाहिए?
1: तो देखिए, थोड़ा सा शायद मैं ये कहूँगा कि आपके स्केल पे डिपेंड करता है. अब आप बहुत छोटे निवेशक हैं तो आप कीप इट सिंपल, एक या दो डाइवर्सिफाइड फंड से आपका काम हो जाता है. कोशिश करिए वो ऐसा कोई आपको अच्छा फंड ले जो खुद ही थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेता हो. कुछ एक ऐसे फंड हैं जिनमें आपको ये एक्सपोजर मिल जाता है. लेकिन अगर आपका एक अच्छे स्केल का निवेश करते हैं आप, तो ये एक बुरा सुझाव नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड वे में क्रिएट करें. मेरे हिसाब से कम 15% अपना पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह से टारगेट करें कि आप विदेशी बाज़ारों में लगाएं. लेकिन अभी वो एवेन्यूज़ म्यूचुअल फंड सेगमेंट में बहुत लिमिटेड हैं. थोड़ा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, आरबीआई की लिमिट्स की वजह से अभी आप बहुत ज़्यादा निवेश बाहर कर नहीं पाते हैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए. तो आप जो बाकी एवेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं.
2: जी, बाकी एवेन्यूज़ में क्या क्या है?
1: बाकी एवेन्यूज़ में जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक वायबल ऑप्शन है, वो है गिफ्ट सिटी, जहाँ पे हालांकि अभी भी टिकट साइज थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन जानकारी का अभाव, क्योंकि बाहर के बाज़ारों का आपको जब तक जानकारी नहीं है तो आप जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट बिना जानकारी के करेंगे. उससे बेहतर है कि आप गिफ्ट सिटी के थ्रू, आप जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे गिफ्ट सिटी में आउटबाउंड फंड्स आपको मिल जाते हैं, उनके जरिए आप निवेश कर सकते हैं.
2: हम श्रोताओं को याद दिला दें सरबजीत कि आज हम म्यूचुअल फंड्स पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. आपके सवालों के जवाब देने के लिए म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं. चले हम अगली खबर की ओर. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयरों में खरीदारी कायम रखी है. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाज़ार में 30,919 करोड़ रुपए का निवेश किया है. कुल निवेश में से 18,791 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारी के माध्यम से आए, जबकि 12,128 करोड़ रुपये प्राथमिक बाज़ार के माध्यम से निवेश किए गए. जुलाई में तेज़ हुई खरीदारी की गति अगस्त में भी जारी रही, जिससे मजबूत बुनियादी आंकड़ों और तिमाही आमदनी के साथ साथ रुपए के स्थिरता से भी समर्थन मिला. इस बीच ऋण बाज़ार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख में मिला जुला रुझान है. अगस्त में अब तक एफपीआई ने वीआरआर से 289 करोड़ रुपए का निवेश किया है. इसी अवधि में एफएआर के माध्यम से 627 करोड़ रुपये आए, और इसके उलट जनरल लिमिट रूट से एफपीआईज ने 2,318 करोड़ रुपए भारतीय बाज़ारों से निकाल लिए हैं.

0: के आंकड़े तो हमेशा हम बताते रहते हैं, हर हफ्ते बताते रहते हैं, कभी आ रहे होते हैं पैसे और कभी जा रहे होते हैं। हालांकि अभी काफ़ी समय से काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके अलावा अगर हम अपने बाजार पर गौर करें आशुतोष, तो क्या लगता है कि अब हम हमारी निर्भरता शायद बहुत हद तक कम हो गई है?
1: जी, पिछले 8-10 साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और इसका श्रेय जाता है भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनका जो पैसा SIP के ज़रिए लगातार भारतीय बाजार में लगता रहता है, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी काउंटर वेट अब दे पाते हैं FII इन्वेस्टमेंट को। पहले FII का पैसा जब आता था या जब जाता था, उसके हिसाब से बाज़ार में काफ़ी भारी उतार चढ़ाव देखा जाता था, लेकिन अब एक उसका स्टेबलाइजिंग फैक्टर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बन गए हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास से पैसा और किसी का नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स का ही है, जो SIP के माध्यम से
0: जा रहा
1: आज की
0: है
1: डेट
0: जी।
1: में करीब 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह जो एक स्टेबिलिटी के साथ भारतीय बाजार में लगता चला जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा काउंटर वेट प्रदान करता है FII इसके उतार चढ़ाव को।
2: आशुतोष, वील कम बैक ऑन दैट। मीनवाइल लेट्स आस्क पंकज फ्रॉम कोलकाता, व्हाट्स हिज क्वेश्चन?
0: पंकज, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: नमस्कार
0: नमस्कार
3: जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने करीब 2 साल पहले SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड नाम से मैंने उसमें SIP स्टार्ट किया था। तो करीब 2 साल पहले, 2 साल से मैं चला रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो है मतलब कुछ रिटर्न कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है। तो क्या ये सही टाइम है कि मतलब अभी निकल जाऊं या अभी हमें वेट करना चाहिए?
1: देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आपने आपको इस पैसे की अगर अगले 1-1.5 साल में ज़रूरत पड़ने वाली है तो बिल्कुल आप निकल जाइए, क्योंकि ये टाइम होराइजन इक्विटी डोमिनेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिस्की हो सकता है, इतनी छोटी अवधि के लिए नहीं बने। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया था रिटर्न बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो इतनी जल्दी आप निराश होकर मार्केट से जाएं, मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा। पिछला 1-2 साल मार्केट्स के लिए जनरली डिसअपॉइंटिंग रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुछ पिछले 5-7 साल में जिस टाइप के मार्केट ने रिटर्न दिए थे और जिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ पिछले 1-2 साल में जो नए निवेशक बाजार से जुड़े, तो पुराने रिटर्न के मुकाबले उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फेस रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिसअपॉइंटमेंट की ऐसी कोई खास वजह है। आप इन इन्वेस्टमेंट्स को समय दीजिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस सबसे ज़रूरी है, तो मेरी राय में आप बने रहिए।
0: जी, अगले कॉलर हैं चेन्नई से सेतुपति, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: या गुड इवनिंग सर,
0: गुड
4: कंप्लीट
0: इवनिंग।
4: टीम। दिस इज रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आई एम नॉट आस्किंग पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, हाउ मच परसेंटेज आई कैन इन्वेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, इफ पॉसिबल नेम द इंडस्ट्रीज। थैंक यू।
1: आई एम अफ्रेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से पुट अ स्पेसिफिक परसेंटेज एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, यू नो, सिंस दिस शो इज स्पेसिफिक टू म्यूचुअल फंड्स। आई वुड से दैट दैट इज अ होल आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, दैट दीज काइंड ऑफ क्वेरीज और दीज काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन वेरी कन्वीनियंटली लीव टू द एक्सपर्टीज ऑफ अ फंड मैनेजर। एट ऑन योर एंड यू शुड ओनली चूज a handful of good diversified long term wealth creating equity funds which have had a good and consistent track record of delivering a strong performance. These could be from the categories of flexi cap, multi cap, value, and let the fund manager decide what kind of allocations should go to which sectors and when.
0: वैसे क्या भारत में सेमी कंडक्टर्स के लिए कोई अलग फंड है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ? नहीं
1: जी, नहीं। अभी इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वैसे भी भारतीय बाजार में बहुत ज़्यादा आपको मिलती नहीं है लिस्टेड यूनिवर्स में, तो इस थीम के स्पेसिफिक आपको कोई फंड अभी नहीं मिलेगा।
0: जी, एक और सवाल था आशुतोष, अभी जो कई बार हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं और कई बार हमारे कई श्रोता और जो छोटे निवेशक हैं, जैसे अभी भी एक सवाल था कुछ, कई बार ऐसा होता है कि हमने निवेश किया था किसी फंड में और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि उसका नाम बदल गया है या कैटेगरी बदल गई है। जैसे कोई इक्विटी एंड डेट फंड था पहले, अभी और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि वो एग्रेसिव हाइब्रिड हो गया है। तो क्या हमने जिस समझ के साथ उसमें निवेश करना शुरू किया था, क्या हमें उस पर विचार करना चाहिए फिर से, क्योंकि क्या वो एग्रेसिव हाइब्रिड मेरा रिस्क बढ़ा देता है?
1: तो देखिए, नाम अगर चेंज हो रहा है फंड का लेकिन काम नहीं बदल रहा है, तो आपको चिंता करने

0: की जरूरत नहीं है तब, क्योंकि कुछ वर्षों पहले सेबी ने स्टैंडर्डाइज करी थी कैटेगरीज और फंड्स को ये निर्देश भी दिए गए थे कि सबके नाम उस कैटेगरी से अलाइंड होने चाहिए, जिससे निवेशकों को ये क्लियर पता चले कि वो किस टाइप के फंड में निवेश कर रहे हैं, उसका क्या रिस्क रिटर्न पे ऑफ होगा। तो उस एक्सरसाइज के रिजल्ट में काफ़ी फंड्स ने अपने थोड़े नाम चेंज किए थे। तो अगर फंड का सिर्फ नाम बदल रहा है तो मेरा ख्याल उससे आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक इन्वेस्टमेंट नीड के लिए सोच समझकर एक फ़ंड में इन्वेस्ट किया था और अगर वो वही काम करता चला जा रहा है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कैटेगरी चेंज का मतलब है कि उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है, एक जैसे इक्विटी एंड डेट फंड जो एग्रेसिव हाइब्रिड में उसका नाम तब्दील हुआ, तो वो फंड काम अभी वही कर रहा है, 75% के करीब पैसा आपका इक्विटी में लगाता है, बाकी पैसा आपका डेट में लगाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वही कंटिन्यूटी, वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, वही पे ऑफ्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर नाम चेंज के साथ साथ फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है तो आपको ध्यान देना होगा और आपको देखना होगा कि क्या नई कैटेगरी में वो आपकी वही इन्वेस्टमेंट नीड्स को फुलफिल करने में फ़ंड अभी भी सक्षम है या नहीं है। और आमतौर पर ये होता है कि जब भी फंड अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज करता है, अपनी कैटेगरी चेंज करता है, तो फंड इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन देता है कि बिना एग्जिट लोड चार्ज किए उनको उस फंड से एग्जिट की ऑप्शन हमेशा प्रोवाइडेड रहती है। शुरू के कुछ हफ्तों में कुछ 30 डेज का या कुछ इस टाइप का विंडो दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। तो अगर वो फंड आपके लिए अब सूटेबल नहीं है नई इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में, तो आप उससे एग्जिट करने का निर्णय लेकर ज़्यादा सूटेबल फंड में मूव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नाम चेंज की वजह से मेरा ख्याल आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है।
1: Ashutosh, I've been listening to you very carefully, and in these last 20 minutes, you've given us good piece of advice. So taking cue from just what you've been saying, no doubt, returns of a mutual fund are a guiding criteria. But when it comes to choosing a mutual fund, how important is it to analyze your time horizons, financial goals, your own personal risk appetite? What's your expert comment on this?
0: It is the foremost, because fund selection comes later. The first thing is which type of fund is suitable. Often the start of any conversation is tell me the best fund, but the idea is first you should focus on getting the right type of investment fund for you. And then, you know, the right fund, the question of the best fund comes later, because every fund, there are it's a very wide spectrum of funds which is available.
1: Correct.
0: Which diverge significantly in their risk return, you know, payoffs or the risk return promise that they provide to the investors. So it's very important that the fund you choose aligns well with your risk appetite, your investment horizon, the investment need that for which you are wanting to invest. And once you've zeroed down on the right category of funds, only then you go down to picking one or two suitable funds from those categories and going ahead with your investment.
2: जी, और देखते हैं कि सोने और चांदी का क्या हाल रहा है। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में 3 सप्ताह से जारी तेजी का सिलसिला थम गया। जैक्सन होल संगोष्ठी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वार्श के आक्रामक रुख वाले पहले भाषण के बाद कीमतों पर दबाव बढ़ा। उम्मीद से अधिक अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और मजबूत अमेरिकी डॉलर ने भी निवेशकों के रुख को प्रभावित किया। MCX पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.8% गिरकर 156,281 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी 4% फिसलकर 236,704 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.2% से अधिक गिरकर $4,494.70 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुआ। और सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 3.6% से अधिक गिरकर $66.99 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुई।
1: और आइए पूछे कृपा शंकर जी से उनका सवाल।
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार।
3: हेलो,
1: हाँ जी, सवाल पूछे।
3: हाँ, मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो बच्चा है 12 साल का, उसके लिए अगर म्यूचुअल फंड हम आगे के लिए रिमेन करना चाहें तो किस ढंग से इसका प्रोसीजर है और हर महीने कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से तो जितना भी डाल सकते हैं तो होता ही है, तो इसका प्रोसीजर बताइए कि बच्चा 7th क्लास में है, 12 साल का है बच्चा है, तो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं आगे के लिए, कब तक वो हम उसको

0: हर महीने कितना कितना हम, क्योंकि इसकी न्यू कस्टमर की जानकारी नहीं है हमारे पास
1: जी। तो मिनिमम निवेश आजकल म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी कम, कुछ फंड्स में तो आप 100 रुपये प्रति माह भी मिनिमम इन्वेस्ट कर आप SIP कंटिन्यू रख सकते हैं। काफ़ी सारे फंड 100 रुपये या 500 रुपये से शुरुआत आपको प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तो आप अपने अमाउंट को इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अलाइन कर चूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही कि निवेश किस तरह करें, तो देखिए आप बच्चे के नाम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक गार्डियन चाहिए होता है, जो गार्डियन का पैन का इन्फॉर्मेशन लगता है, और आप गार्डियन अंडर गार्डियनशिप बच्चे के नाम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 18 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उन पर फ्रीज लग जाएगा जब तक आप वो यूनिट्स बच्चे के नाम में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। थोड़ा ये मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो मेरी सलाह मानिए तो आप एज गार्डियंस पेरेंट्स आप अपने ही अकाउंट से बच्चे के लिए निवेश करें, और बच्चे को चाहे आप नॉमिनी बना दीजिए उस इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट्स पे आपका ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, कोई 18 साल की उम्र के बाद कंपल्सरीली उनको ट्रांसफ़र करने की आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो आप अपने नाम से ही मेरे हिसाब से निवेश अभी शुरू कर सकते हैं और उसको इन्वेस्टेड रखें, और बाद में आप कॉल ले सकते हैं कि आपको किस तरह ये यूनिट्स को ट्रांसफ़र करना है या उनको उसी तरह कंटिन्यू रखना है।
2: जी, बच्चों की बात आई तो कई बार देखते हैं हम कि जो अपने 18 साल की लिमिट है, तो 20-21 साल के जो युवा हैं हमारे और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि कुछ पॉकेट मनी से या कुछ पार्ट टाइम काम करके कहीं कुछ कमाया, और SIP का शौक आजकल इतना है या इन्वेस्टमेंट का शौक इतना है या अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि वो भी चाहते हैं कि हम इसमें निवेश करें। क्या इसके लिए निवेश करने पर कुछ उन्हें फिर टैक्स फाइल करना ज़रूरी हो जाता है या कुछ इस तरह की कोई बाधा तो नहीं आती उनके?
1: जी, अगर कभी रिडम्पशन हो रही है और कोई कैपिटल गेन एक्रू हो रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, लेकिन अगर आप वैसे निवेशित हैं आपको अदरवाइज़ अगर आपको इनकम आपकी इतनी नहीं है या आप रिटर्न फाइल करने से अदरवाइज एग्जेम्प्ट हैं तो ऐसी कोई बाधा आपके लिए
2: कोई बाध्यता नहीं है इसमें।
3: जी आशुतोष जी, सिंस वी आर ऑन द जेन जी, सो इन दिस फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड, हाउ हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चेंज्ड द पिक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एज फार एज द यंग जनरेशन इज कंसर्न्ड?
1: सो आई से नॉट जस्ट फॉर द यंग जनरेशन बट अक्रॉस द बोर्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव ग्रेटली डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज देर वॉज अ टाइम वेन टू मेक एन SIP यू हैड टू गिव पोस्ट डेटेड चेक्स। When I started investing about 20-25 years back, at that time you did not have a facility to create an e-mandate, an e-NASH mandate through which your SIPs would be deducted every month. My first SIP was through post-dated checks. So I set up an SIP for 12 months and I had to give 12 checks. But things have moved, at a rapid pace from there on. It is not just, it is the evolution of the entire ecosystem. It is not just about the platforms that have come up, but your KYC formalities now can be done completely through DigiLocker, through Aadhaar. All these facilities are completely digitized, and in about 15 minutes time you can set up your account from scratch and make your first investment. So of course, it connects much more with the younger generation because they've started with everything digital. But even for elder investors, for senior citizens who are comfortable doing it digitally, it's a great enablement.
3: All right. The Reserve Bank of India's special swap facility for foreign currency non-resident bank FCNRB deposits will be available for deposits mobilized until 31st August. The Reserve Bank introduced the special USD-INR forex swap facility covering FCNRB deposits, external commercial borrowings and overseas foreign currency borrowings on 8th of June with a view to strengthen India's balance of payments and incentivize capital inflows. Meanwhile, we have another caller from Delhi, Vinod ji, sawal puche.
4: पूरी मार्केट मंत्र टीम को मित्र से नमस्कार
3: जी। नमस्कार,
4: मैं आशुतोष से पूछना चाहूंगा कि जब जैसे कि पिछले साल से मैं रिटर्न कुछ नहीं आया म्यूचुअल फंड से, लेकिन हम रियल एस्टेट की इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें, हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करने के? थैंक यू।
1: तो देखिए, मेरी राय में जो सबसे पोटेंट तरीका मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी एज एन एसेट क्लास के पास शायद सबसे ज़्यादा सक्षमता है।

0: लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने की और एक जेन्युइन वेल्थ जनरेट करने की। आजकल आपने रियल एस्टेट बोला, रियल एस्टेट का देखिए टिकट साइज बहुत ज़्यादा है और उसके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, बहुत सारे इनविजिबल एक्सपेंसेस भी रियल एस्टेट में होते हैं। क्या सच में आप एक अच्छा रिटर्न बना पाते हैं कि नहीं, मेरा ख्याल है केस बाय केस डिपेंड करेगा, बट आजकल रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेने के लिए रीट्स के तौर पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से एक अच्छा साधन उभर के आ रहे हैं। अभी बहुत सारे रीट्स मार्केट में नहीं है, लेकिन सेबी काफ़ी जागरूकता इसके लिए ला रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि रीट्स को भी एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बनाया जाए रियल एस्टेट में, इन एक रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्ट करने का एक आम निवेशक के लिए जरिया मेरा ख्याल बनने का काफ़ी संभावना है, काफ़ी पोटेंशियल है रीट्स में। तो एक रीट्स एक आप दूसरी एसेट क्लास है जिसको आप इस लिहाज से देख सकते हैं।
1: Well, now let's take a peep into how the markets are expected to show up next week. Domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including macroeconomic data, foreign institutional investor flows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor the first quarter gross domestic product GDP estimate for the current fiscal year, scheduled to release tomorrow. The index of services production data will also remain in focus. Investors will also monitor manufacturing and services purchasing managers index, PMI readings, GST collections and forex reserves.
2: Ji, aaj waqt itna hi hai Ashutosh karyakram mein aane aur shrotaon ke prashnon ke uttar dene ke liye bahut bahut dhanyawad.
0: Ji, dhanyawad.
1: Listeners, a reminder of the headlines. India and Uzbekistan elevate ties to comprehensive strategic partnership, set bilateral trade target of $5 billion by 2030. Foreign portfolio investors infuse over 30,000 crore rupees into Indian equities in August so far. And in bullion market, gold and silver prices snap 3-week rising streak. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल

0: साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर और निर्मला सीतारामन ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देशभर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेचिंग के भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8:00 वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। India and Uzbekistan today announced to elevate their mutual strategic partnership to comprehensive strategic partnership level. The Central Asian country also agreed to establish a framework for long-term supply of uranium to India and discuss the sites of the mining for rare earth minerals. Both countries today signed 11 memorandums of understanding in various sectors including mining, Ayurveda, tourism, economic and financial dialogue, comprehensive and strategic partnership, higher education and environment. Our correspondent reports that during the bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, both countries agreed to set a target of $5 billion of bilateral trade by 2030, which is 5 times of current trade. Important decisions were taken for bilateral trade in the areas of trade and investment, infrastructure, critical minerals, mining, defense and security, innovation, agriculture, pharmaceuticals, health, information technology, digital public infrastructure including UPI and education, among others. Prime Minister Narendra Modi said that both countries have zero tolerance against terrorism, extremism and separatism.
0: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
2: प्राइम

0: भारत किर्गिस्तान के संबंधों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं किर्गिस्तान में भारत के राजदूत श्री वीरेंद्र सिंह यादव। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम क्या क्या होगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी 31 अगस्त को वर्ल्ड नॉमेड गेम्स के उद्घाटन में पार्टिसिपेट करेंगे और 1 सितंबर को एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑन द साइडलाइंस माननीय प्रधानमंत्री जी की बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी, जैसे कि आपको ऑलरेडी ज्ञात है प्रधानमंत्री रशिया के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करेंगे और ऑफकोर्स वो जो होस्ट कंट्री के लीडर हैं हिज एक्सीलेंसी मिस्टर सदर जापरोव प्रेसिडेंट ऑफ द किर्गिज रिपब्लिक से भी उनकी बायलैटरल मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि सभी जो बायलैटरल रिलेशनशिप का रिव्यू होगा और इसको कैसे और सुदृढ़ किया जा सके उस पर चर्चा होगी।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान यात्रा के दौरान एससीओ समिट में शामिल होंगे और ये 26th समिट है और इस साल की थीम है 25 इयर्स ऑफ द एससीओ टुगेदर टुवर्ड्स सस्टेनेबल पीस डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप ये समिट भारत के लिहाज से?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा है ये प्राइमरी इज टू पार्टिसिपेट इन द 26th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ द एससीओ एंड इंडिया अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर enjoys a clout in the global arena and India is also a very strong and respected voice of the global south and India is one of the largest global economies growing at very fast rate enjoys a considerable interest or I'd rather say influence amongst the other member states on what India's stand is on various issues. In that respect, everybody is looking forward to Honorable Prime Minister's statement during the SCO summit and wherein he would be highlighting what the India's priorities would be. And I think this visit is also an opportunity to strengthen our bilateral relationship with the Kyrgyz Republic and the warm and friendly ties between our two countries which are based on historical and civilizational foundation.
0: सर, यदि भारत और किर्गिस्तान के संबंधों की बात करें तो किस तरह से आप इन्हें डिफाइन करते हैं, किस तरह से आप परिभाषित करेंगे?
1: बहुत ही वार्म और फ्रेंडली पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच और बोथ द कंट्रीज शेयर अ सिमिलर ग्लोबल विजन एंड वी कोऑपरेट वेरी क्लोजली नॉट ओनली बायलैटरली बट आल्सो इन द मल्टीलैटरल फोरम एंड जो चैलेंजेस हैं वो दोनों देशों के देयर सिमिलर चैलेंजेस और बोथ द कंट्रीज कोऑपरेट ईच अदर लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस एंड टू कंटिन्यू इन देयर जर्नी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू देयर रिस्पेक्टिव सिटीजंस।
0: सर, आपने जो चुनौतियों की बात की तो दोनों ही देश भारत भी और किर्गिस्तान भी एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसमें टेररिज्म भी है, सेपरेटिज्म भी है और रेडिकलाइजेशन भी है, तो किस तरह से आपस में मिलकर इनसे निपटने की रणनीति तैयार होगी?
1: हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है किर्गिज गणराज्य के साथ एंड वी कंडक्ट एनुअली अ बायलैटरल एक्सरसाइज खंजर व्हिच वुड बी हैविंग इट्स 14th एडिशन इन फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड वी आल्सो कोऑपरेट वेरी क्लोजली इन द capacity enhancement through participation of Kyrgyz official in the defense ITEC programs and by curating tailor-made courses as per their specific requirements. And the joint working group meets annually and they chalk out a plan of action and all this is to enhance the capacities and share each other's experience to prepare for the meeting common challenges which you have listed.
0: सर, किर्गिस्तान जो है वो भारत का एक एक्सटेंडेड नेबरहुड है। यदि हम सेंट्रल एशिया के साथ में भारत के संबंधों की बात करें तो कितना महत्व रखता है भारत के लिए किर्गिस्तान?
1: अगर आप देखें तो बिश्केक से दिल्ली 3 घंटे से कम समय लगता है थ्रू एन फ्लाइट, तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि हम कितने करीब हैं। और जैसे आपने कहा कि सेंट्रल एशिया और किर्गिज रिपब्लिक इंडिया के एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजिक नेबरहुड में आता है, दिस इज अ वे to closely cooperate with the region and including the Kyrgyz Republic. And this engagement is through the political dialogue, through the established institutional mechanisms in the field of defense and security, enhancing the trade and economic cooperation, and also having an excellent people-to-people linkages and cultural cooperation. And Kyrgyz Republic also hosts more than 16,000 Indian medical students, and they ensure that they have a safe and secure environment to study.
0: सर, भारत और किर्गिस्तान का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है संबंधों का। इसमें जो दोनों के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, इनको और मजबूत बनाने के लिए हाल फिलहाल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में और क्या कदम उठाए जाएंगे?
1: 2019 के बाद जो हमारा बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर है वो पिछले 5 सालों में लगभग दुगना हो गया है और हम प्रयास कर रहे हैं

0: हैं कि हम इसको और ऊंचाई तक कैसे ले जा सके, उसके लिए हम व्हाट आर द न्यू एरियाज वेयर वी शुड फोकस ऑन एंड लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस डेलीगेशंस दे विजिट किर्गिज रिपब्लिक, सिमिलरली फ्रॉम हियर दे पार्टिसिपेट इन वेरियस एग्जीबिशंस एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर हाउ द बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर कुड बी इंक्रीज्ड एंड हाउ द म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स कैन बी प्रमोटेड बिटवीन द टू कंट्रीज।
1: जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो भी किर्गिस्तान में बड़ी संख्या में, तो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें और स्ट्रेंथन करने में वो कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं।
0: द इंडियन डायस्पोरा ऑलवेज इज एन एसेट because they are the organic bridges between the two countries and they help in creating an image of the country and we are very proud that the Indian diaspora and the Kyrgyz Republic has lived up to that reputation and they act as a facilitator or medium to enhance the people to people linkages.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किर्गिस्तान की ये तीसरी यात्रा है, इसके पहले भी वो 2019 में एसियो समिट में भी शामिल होने की आ चुके हैं, ये यात्रा का कितना महत्व है?
0: प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण होती है, वो भले ही पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो। प्रधानमंत्री की यात्रा से बायलैटरल रिलेशंस को एक फिलिप मिलता है, एक सुदृढ़ता मिलती है और नए आयाम एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलता है। सो मैं तो यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण है।
1: सर एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान जो वर्ल्ड नोमैड गेम्स है उसके शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री जी का उसके शुभारंभ समारोह में शामिल होना कितना महत्व रखता है और इस पूरे रीजन के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है?
0: The organization of the 6th World Nomad Games is very significant for the Kyrgyz Republic because the games are returning to the Kyrgyz Republic after a little gap and they have been preparing extensively for organization of these games. They have built a new beautiful stadium which is the biggest stadium in the Central Asia in the form of traditional yurta, and the World Nomad Games is an opportunity for them to promote and propagate their rich cultural nomadic heritage, and there is a participation from India also and we have a 73 strong contingent which is participating in archery, in wrestling, in other forms of game. And I think Honorable Prime Minister has accepted the invitation of His Excellency the President of Kyrgyz Republic and he would be participating in the inauguration of the World Nomad Games, which is also a reflection of both the countries respecting their rich heritage, cultural heritage and way of life in case of India, which has been in existence for many, many centuries.
1: Thank you so much, sir. Akashvani Samachar se baat karne ke liye.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत बीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: சில நொடிகளில் தொடரும் செய்தி தொகுப்புகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1.5 लाख डॉलर की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए 10 लाख डॉलर का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
2: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान

0: हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
4: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि PM स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
4: PM स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। PM स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
4: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान

0: धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
2: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।

0: यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In its remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को comprehensive strategic partnership का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को-प्रोडक्शन और को-डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both the countries.
2: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल

कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे बीच रहती हैं। वे इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमसे बातें करती हैं, कभी कविता के जरिए, कभी खेल के मैदानों की यादों के जरिए और कभी अपने जीवन के अनुभवों के जरिए। इन आवाजों में एक पूरा इतिहास सांस लेता है और जब बरसों बाद ये आवाजें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ कल आज से कुछ कह रहा हो। शायद इसलिए आवाज हमारी पहचान होती है।

फिराक गोरखपुरी, मेजर ध्यानचंद और अमृता प्रीतम, आज ये तीनों महान हस्तियां हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाजें हमारे साथ हैं। आकाशवाणी के अभिलेखों में सुरक्षित इन आवाजों के माध्यम से आज हम उन्हें फिर याद करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके जीवन को समझेंगे और जानेंगे कि इतने वर्षों के बाद भी उनकी आवाजें हमें क्यों प्रेरित करती हैं। आइए समय की इस दूरी को कुछ देर के लिए मिटाते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज।

0: इन तीनों की दुनिया अलग थी। एक शायर थे, एक महान खिलाड़ी और एक प्रसिद्ध लेखिका। लेकिन इन तीनों में एक बात समान थी, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ी जिससे आने वाली पीढ़ियां आज भी प्रेरणा लेती हैं। सितारों से उलझता जा रहा हूं, शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूं, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूं, जहां को भी समझता जा रहा हूं। अब सुनते हैं एक ऐसी आवाज जिसने उर्दू शायरी को अलग पहचान दी।
1: शायरी तो हसास तरीके तो कोई बात कह देने का नाम नहीं, शायरी महज इजहार नहीं, शायरी रूहानी लिहाज से एक तामीर, तकरीब की फोटोग्राफी।
0: 8 अगस्त 1896 को गोरखपुर में जन्मे फिराक गोरखपुरी का नाम था रघुपति सहाय। वे उर्दू के मशहूर शायर और लेखक थे। उनकी शायरी में प्रेम, प्रकृति, जीवन और इंसानी रिश्तों की गहरी समझ दिखाई देती है।
2: किसी का कौन हुआ यूं तो उम्र भर, फिर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब, मगर फिर भी।

शब्द अलग हो सकते हैं, लहजे अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात दिल से निकलती है तो वो हर दिल तक पहुंचती है। शायद यही फिराक की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने भाषा की सीमाओं के पार जाकर इंसान को इंसान से जोड़ दिया। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं।

0: The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. India score. The final result was India 8, Germany 1.
1: भारतीय हॉकी की कहानी उस दौर की कहानी है जब भारत की प्रतिभा और खेल कौशल ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था और इस गौरवशाली यात्रा के सबसे उज्जवल अध्यायों में एक नाम था मेजर ध्यानचंद। उनके लिए हॉकी महज एक साधना थी। गेंद पर अद्भुत नियंत्रण, खेल की गहरी समझ और गोल करने की असाधारण कला ने उन्हें दुनिया के महानतम खिलाड़ियों की पंक्ति में ला खड़ा किया। लेकिन ध्यानचंद की असली महानता उस खेल संस्कृति और विरासत में थी जो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। 29 अगस्त उनकी जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन उन असंख्य खिलाड़ियों के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण को सम्मान देने का दिन भी है जो अपने खेल के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाते हैं। ध्यानचंद से जुड़ी अनगिनत कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित है। तस्वीरों में दर्ज उनका व्यक्तित्व, मैदान से जुड़े किस्से और उनकी उपलब्धियां हमें उस स्वर्णिम दौर की याद दिलाते हैं। लेकिन जब इतिहास के पन्नों से निकलकर उनकी आवाज हमारे सामने आती है तो वो दौर और भी जीवंत हो उठता है। आइए सुनते हैं मेजर ध्यानचंद की अपनी आवाज आकाशवाणी के अभिलेखों से।
2: फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। मैंने देखा है वहाँ के हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर तो उनके टेलीविजन वगैरह फोटोग्राफ्स वगैरह ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे।

0: लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों में जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज लड़कों को सिखलाने के लिए खींच लेते थे, और वो फोटोज स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा, बच्चों को वो स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे, और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है, और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है, फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं बजाय एक मारने के, अब ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है, और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ हिंदुस्तान जो खेलती है हॉकी वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता।
1: बादलों के महल में मेरा सूरज सोया हुआ है, और उस महल का कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है वो मेरे चिंतन के पैरों के लिए बहुत संकरी है। मैं अपने सूरज के पास कैसे पहुँचूँ जो बादलों के महल में सोया हुआ है।
2: अभी आपने सुनी अमृता प्रीतम की आवाज़, उनकी बातों में एक सादगी है और इसी सादगी में उनके अनुभवों की गहराई भी दिखती है। अमृता प्रीतम ने ऐसे समय में लिखा जब समाज में महिलाओं के लिए अपनी बात खुलकर कहना आसान नहीं था। उन्होंने प्रेम के बारे में लिखा, उन्होंने बंटवारे का दर्द लिखा, उन्होंने औरत के मन की बात लिखी, और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने तरीके से जीने और लिखने की हिम्मत दिखाई। 31 अगस्त 1919 को जन्मी अमृता प्रीतम भारतीय साहित्य की ऐसी आवाज थी जिन्होंने प्रेम, रिश्तों, अकेलेपन और अपने समय की पीड़ा को बहुत सहज शब्दों में लिखा। उनकी लेखनी में एक खास बात थी, वे दिल की बात कहने से कभी पीछे नहीं हटी।
1: हमारे देश के 7 पवित्र स्थान 7 पुरियां कहे जाते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, अवंती और द्वारापुरी। इनमें से द्वारापुरी सागर के किनारे थी, जो कृष्ण के देह त्यागने के 7वें दिन सागर में अलोप हो गई थी। बाद में वो द्वारका के नाम से दूसरे स्थान पर बस गई, पर अपने मूल स्थान से वो लोप हो चुकी है। मैं सोचती हूँ कि सागर में लोप हो चुकी द्वारावती हर इंसान के मैं का वो टुकड़ा है जिसकी तलाश हर इंसान के मैं को करनी होती है और उसका इतिहास खोजना होता है। इसी मैं की तलाश में मैंने जाना कि मेरे में और एक ब्राह्मण में क्या फर्क है। यही कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे में और एक क्षत्रिय में भी यही फर्क है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। मेरे में और एक वैश्य में भी यही फर्क है कि मैं वैश्य नहीं हूँ। इसी तरह मेरे में और एक शूद्र में भी यही फर्क है कि मैं शूद्र नहीं हूँ। और जाना कि मेरे में और एक हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई में भी यही फर्क है कि मैं हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई नहीं हूँ। मेरे मैं की एक पवित्र पुरी द्वारावती फिर कौन से पानी में लोप हो गई, यही खोजते हुए मैंने अपनी द्वारावती का भेद पा लिया कि मैं चरक जाति की हूँ। हमारे प्राचीन काल में चरक उसे कहा जाता था जिसका मुतालिया, जिसका अध्ययन जिंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता था। वो तमाम जिंदगी इलम को, ज्ञान को ग्रहण करता था और तमाम जिंदगी उस इलम को, ज्ञान को बांटता रहता था। मैंने इलम के लिए अपनी प्यास को समझ लिया तो अपनी जाति पहचान ली और जान लिया कि दो हाथों से जो अर्जित करना है वही 1000 हाथों से बांट देना है।

0: आज इतने वर्षों बाद भी अमृता प्रीतम की बातें हमें अपनी सी लगती हैं, शायद इसलिए कि उन्होंने अपने समय की उन भावनाओं को शब्द दिए जिन्हें महसूस तो बहुत लोग करते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। प्रेम हो, बिछड़ने का दर्द हो, विभाजन की पीड़ा हो, या एक स्त्री के मन और अपनी पहचान की बात, अमृता प्रीतम ने हर विषय को बहुत सच्चाई और बेबाकी से लिखा।
1: अर्ध नारीश्वर का फलसफा खो गया तो दास्ता पैदा हुई, शिव शक्ति जैसा चिंतन खो गया तो जड़ता पैदा हुई, धर्म खो गया तो प्रतिकर्म में से मजहब पैदा हुआ, आत्मा खो गई तो शरीर एक वस्तु बन गया, मजहब और सियासत बहुत बड़े माध्यम बन गए जिनके हाथों वस्तु बन चुके इंसान का व्यापार होता है।
0: उन्होंने अपने जीवन में भी अपनी राह खुद चुनी और अपनी पहचान बनाई। यही वजह है कि उनका साहित्य केवल एक दौर की कहानी नहीं रह गया, उनकी रचनाएं कई भाषाओं में पढ़ी और अनुदित हुई। अलग अलग प्रदेशों के पाठकों ने उनमें अपने जीवन और अपनी भावनाओं की झलक देखी। शायद यही किसी लेखक की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बात उनके दिल से निकलती है लेकिन पहुंचती है हर दिल तक। अमृता प्रीतम के साथ तो आकाशवाणी का रिश्ता और भी खास है। अमृता प्रीतम ने दिल्ली में आकाशवाणी की पंजाबी सेवा में काम किया था और 1961 तक जुड़ी रहीं। यानी जिस आकाशवाणी के अभिलेख आज उनकी आवाज को हमारे लिए संभाल कर रखे हुए हैं, कभी उसी आकाशवाणी का हिस्सा बनकर अमृता प्रीतम ने भी श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाई थी।
1: मेरी तमाम दुनिया सपनों की दुनिया है, इसे तकसीम करूं तो एक हिस्सा जागती आंखों के सपनों से भरा हुआ है और दूसरा सोई हुई आंखों के सपनों से। जिंदगी का यथार्थ क्या है और क्या हो सकता था, इसी यात्रा को मैं नाम देती हूँ मैं से लेकर मैं तक की यात्रा, यानी अपने ही छोटे मैं से लेकर अपने ही बड़े मैं तक की यात्रा। यूनान के लेखक निकोस काजांजाकिस ने मेरे इस एहसास को बड़े खूबसूरत अल्फाज दिए थे, क्रिएट एन आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू रिजेंबल इट। मैंने काजांजाकिस के इन अल्फाज को गुरु मंत्र की तरह धारण किया है और जो सोचती रही लिखती रही वो एक यात्रा है, अपने छोटे मैं से लेकर अपने बड़े मैं तक पहुंचने की। कह सकती हूँ कि ये एक अक्षर की यात्रा है, छोटे मैं से लेकर बड़े मैं तक की यात्रा, गुलामी से स्वतंत्रता तक की यात्रा, नफरत से मोहब्बत तक की यात्रा, जड़ से चेतन तक की यात्रा, अक्षर से अर्थ तक की यात्रा और महदूद से लामहदूद तक की यात्रा, यानी सीमित से असीम होने तक की यात्रा।

0: समय बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें रह जाती हैं। और जब वे आवाज़ें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ समय कुछ पल के लिए लौट आया हो। एक ने अपने शब्दों से जिंदगी को आवाज़ दी, एक ने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया और एक ने अपनी शायरी से दिलों में जगह बनाई। रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक, अपने हुनर को पहचानना, उसे साधना और ऐसा काम करना जो वक्त बीत जाने के बाद भी लोगों को प्रेरित करता रहे। अमृता प्रीतम की लेखनी से हम अपने मन की बात कहने की हिम्मत सीखते हैं। मेजर ध्यानचंद से मेहनत, अनुशासन और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा सीखते हैं और फिराक गोरखपुरी से भाषा और संस्कृति की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसान को समझना सीखते हैं। समय बदलता रहेगा, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, लेकिन इन महान व्यक्तित्वों से मिलने वाली सीख कभी पुरानी नहीं होगी। नई पीढ़ी इनके जीवन से सीखती रहेगी और अपने सपनों को पूरा करने का साहस पाती रहेगी। ये तीनों आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी यादें हैं, इनके शब्द हैं, इनके अनुभव हैं और सबसे बढ़कर इनकी आवाजें हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मगर आवाज वो ठहर जाती है। यही तो है अनुगूंज, वक्त के साथ तस्वीरें धुंधली पड़ जाती हैं, नाम यादों में कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन आवाज अपने होने की एक निशानी छोड़ जाती है।
1: अभी आप आकाशवाणी अभिलेखागार द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे। वाचन आशुतोष कुमार, शीर्षक गीत राजेश राज और गायक जितेंद्र सिंह, शोध आलेख एवं निर्देशन मोनिका गुलाटी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने तशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग लापता हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर हॉकी पुरुष विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिथेल स्टूफथॉफ ने मैच का एकमात्र गोल किया। इससे पहले तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और क्रिकेट में महिला एशिया कप में भारत अपने अभियान की आज शुरुआत कर रहा है। थाईलैंड के साथ खेले जा रहे पहले मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को जीतने के लिए 160 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में थाईलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक पांचवें ओवर में 2 विकेट खो करके 34 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। नासा ने नई आकाश गंगाओं और बाह्य ग्रहों की खोजों के लिए अंतरिक्ष दूरबीन का सफल प्रक्षेपण किया। और पुरुष हॉकी में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर विश्व कप का खिताब बरकरार रखा। अरब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारत

0: ये विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। वहीं तिब्बत में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। चीनी अधिकारियों के अनुसार 546 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 68.5 टन राहत सामग्री भेजी है और खोज तथा बचाव कार्यों में सहायता के लिए तकनीकी दल, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और उपकरण भेजे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट में बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। नासा की नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने के मिशन पर फ्लोरिडा से भेजा गया है। अगले 5 वर्ष में इस दूरदर्शी से वैज्ञानिकों को अब तक अनदेखी आकाश गंगाओं और बाह्य ग्रहों की खोज करने में मदद मिलेगी। इससे डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझने और ब्रह्मांड के विकास का पता लगाने में भी सहायता मिलेगी। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में 44वीं मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 160 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में थाईलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 8वें ओवर में 4 विकेट पर 43 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। नेपाल ने भोटेकोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। और पुरुष हॉकी में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर विश्व कप का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Please remain tuned in for the news in Hindi and English.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान

0: ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding (MOUs) aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia. Later, at a joint press conference with Uzbekistan President, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
3: Dono deshon ke beech karibi raksha aur suraksha sahyog hamare gehre aapasi vishwas ko darshata hai. Aane wale samay mein hum dono deshon ki defense industries ke beech direct linkage, co-production aur co-development ko बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती।

0: Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra. Today, we'll be taking your calls on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjit Kaur, along with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: Dhanyawad Sarabjit, and namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान एलिवेट टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव

0: comprehensive strategic partnership, set bilateral trade target of $5 billion by 2030. Foreign portfolio investors infuse over 30,000 crore rupees into Indian equities in August so far. And in bullion market, gold and silver prices snap 3-week rising streak.
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला 2030 तक 5 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में 3 सप्ताह पुरानी तेजी टूटी

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodhji, I see our first caller has already connected with us from Uttar Pradesh. Vivek ji, swagat hai aapka, sawal poochhe.
1: Market Pinda team aur expert ko namaskar.
0: Ji namaskar.
1: Main SIP ke dwara ATM se mutual fund mein invested hu 8 years se aur mere paas ek lump sum amount hai aur main ise invest karna chahta hu STP ke madhyam se 12 kiston mein 12 mahino mein main ise spread kar lagana chahta hu aur main ek aggressive investor ke roop mein इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. इसमें मैं एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक वैल्यू फंड और एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहता हूँ. कृपया मुझे बताइए मैं इसमें कितना कितना पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज रखूँ और जो अदर है मिड कैप स्मॉल कैप इसमें कितना रेशियो रखूँ. अलग अलग मुझे थोड़ा गाइड करें कि मुझे कितना अमाउंट स्प्रेड कर कितना परसेंटेज इसमें लगाना चाहिए और मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहता हूँ 7 से 10 ईयर्स के लिए.
2: जी तो देखिए कोई इसका बहुत डिफाइंड फार्मूला नहीं है लेकिन आपने बताया कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप जैसे एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक वैल्यू फंड का आप चुनाव करने में इच्छुक हैं. थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर आपको इन फंड से भी मिल सकता है और उसके अलावा अगर आप 15% अपना पैसा एक डिफाइंड फोकस्ड मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड में अगर लगाते हैं और बचा हुआ पैसा अगर आप अपना फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप इन टाइप की कैटेगरीज में लगाते हैं तो देखिए मोटा मोटा एसेट एलोकेशन कुछ ऐसा रहेगा. आपका 15% डेडिकेटेड मिड कैप और स्मॉल कैप आपके इन फंड्स से मिलेगा और फ्लेक्सी कैप और जो मल्टी कैप फंड्स हैं इनमें भी आप लगाएंगे इनसे भी आपका कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपोनेंट बनेगा तो करीब 45-50% शायद आपका पैसा इन छोटी कंपनीज के शेयर्स में निवेशित रहेगा बचा हुआ लार्ज कैप में. तो आई थिंक एक फेयरली एग्रेसिव पोर्टफोलियो रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए.
0: All right, after that advice, let's take a deep dive into the big news of the day. India and Uzbekistan today announced to elevate their mutual strategic partnership to comprehensive strategic partnership level. The Central Asian country also agreed to establish a framework for long-term supply of uranium to India and discuss the sites of the mining for rare earth minerals. Our correspondent reports that on the second day of his visit, Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with President Shavkat Mirziyoyev of Uzbekistan and both sides reviewed the entire spectrum of bilateral relations. Both countries signed 11 memoranda of understanding in various sectors including mining, economic and financial dialogue and tourism among others.
3: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं. इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है. हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है. अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है. इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे.
0: The talks between both sides focused on expanding cooperation in the areas of trade and investment, agriculture, pharmaceuticals and digital public infrastructure, among others. An important commercial agreement was done to enable UPI apps of India to scan national

0: QR, UZQR for making merchant payments in Uzbekistan. Ashutosh, before we go any further with the more news in our program today, we've heard some positive headlines today. We've spoken about this comprehensive strategic partnership. We spoke about the FIIs infusing funds. So how do you view this in the landscape of mutual fund investment for a common investor?
1: So the broad undercurrent that we should look at is that the more opportunities Indian businesses have to expand their businesses, increase their exports to different countries, bilateral agreements like these help open up market access for Indian businesses across the globe. Indian companies may not, remain dependent on one or two economies or one or two geographies, and that is the whole idea to broad-base the business opportunities for Indian businesses, and agreements like these contribute to that. And a pass-through effect of this would land on the retail investors, because as businesses grow, they become more profitable, their values appreciate, their stock price appreciate, and in the long term, equity investors end up being the beneficiaries in an indirect way. So clearly there is a positivity and a long-term impact should be positive for retail investors as well.
2: Sarabjit ne abhi ab videshon ki baat shuru kar di hai aur जब चर्चा इसी पर है तो मुझे अभी कुछ समय पहले की बातें भी याद आने लगी जब हम बात कर रहे थे कि विदेशी फंड्स में हम कैसे निवेश करें, और कई श्रोता इस पर अक्सर सवाल पूछते रहते हैं, और समय समय पर जब मौका मिलता है, जब खुलता है कहीं किसी फंड में निवेश का मौका मिलता है, तब कुछ लोग बहुत प्रॉम्प्टली उसमें निवेश भी कर रहे होते हैं। आशुतोष, अगर जब कभी ऐसा अवसर आता है, आरबीआई की लिमिट कहीं पर मिलती है हमें, जब निवेश करने का मौका आता है, तो एक आम निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत किसी ऐसे बाज़ार में, अमेरिका के या यूरोप के या एशिया के दूसरे बाज़ारों में एक्सपोजर वाले फंड्स में लगाना चाहिए?
1: तो देखिए, थोड़ा सा शायद मैं ये कहूँगा कि आपके स्केल पे डिपेंड करता है। अब आप बहुत छोटे निवेशक हैं तो आप कीप इट सिंपल, एक या दो डाइवर्सिफाइड फंड से आपका काम हो जाता है। कोशिश करिए वो ऐसा कोई आपको अच्छा फंड ले जो खुद ही थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेता हो। कुछ एक ऐसे फंड हैं जिनमें आपको ये एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन अगर आपका एक अच्छे स्केल का निवेश करते हैं आप, तो ये एक बुरा सुझाव नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड वे में क्रिएट करें। मेरे हिसाब से आप कम से कम 15% अपना पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह से टारगेट करें कि आप विदेशी बाज़ारों में लगाएं, लेकिन अभी वो एवेन्यूज़ म्यूचुअल फंड सेगमेंट में बहुत लिमिटेड हैं। थोड़ा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, आरबीआई की लिमिट्स की वजह से अभी आप बहुत ज़्यादा निवेश बाहर कर नहीं पाते हैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए, तो आप जो बाकी एवेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
2: जी, बाकी एवेन्यूज़ में क्या क्या है?
1: बाकी एवेन्यूज़ में जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक वायबल ऑप्शन है वो है गिफ्ट सिटी, जहाँ पे हालांकि अभी भी टिकट साइज थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन जानकारी का अभाव, क्योंकि बाहर के बाज़ारों का आपको जब तक जानकारी नहीं है तो आप जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट बिना जानकारी के करेंगे। उससे बेहतर है कि आप गिफ्ट सिटी के थ्रू, आप जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे गिफ्ट सिटी में आउटबाउंड फंड्स आपको मिल जाते हैं, उनके जरिए आप निवेश कर सकते हैं।
2: हम श्रोताओं को याद दिला दें सरबजीत कि आज हम म्यूचुअल फंड्स पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 आपके सवालों के जवाब देने के लिए। म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। चले हम अगली खबर की ओर। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयरों में खरीदारी कायम रखी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाजार में 30,919 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 18,791 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारी के माध्यम से आए, जबकि 12,128 करोड़ रुपये प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए। जुलाई में तेज हुई खरीदारी की गति अगस्त में भी जारी रही, जिससे मजबूत बुनियादी आंकड़ों और तिमाही आमदनी के साथ साथ रुपए के स्थिरता से भी समर्थन मिला। इस बीच ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख में मिला जुला रुझान है। अगस्त में अब तक एफपीआई ने वीआरआर से 289 करोड़ रुपए का

0: निवेश किया है। इसी अवधि में एफएआर के माध्यम से 627 करोड़ रुपए आए और इसके उलट जनरल लिमिट रूट से एफपीआईज ने 2318 करोड़ रुपए भारतीय बाजारों से निकाल लिए हैं। एफपीआई के आंकड़े तो हमेशा हम बताते रहते हैं, हर हफ्ते बताते रहते हैं, कभी आ रहे होते हैं पैसे और कभी जा रहे होते हैं, हालांकि अभी काफ़ी समय से काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके अलावा अगर हम अपने बाज़ार पर गौर करें आशुतोष, तो क्या लगता है कि अब हमारी निर्भरता शायद बहुत हद तक कम हो गई है?
1: जी, पिछले 8-10 साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और इसका श्रेय जाता है भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनका जो पैसा SIP के ज़रिए लगातार भारतीय बाज़ार में लगता रहता है, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी काउंटर वेट अब दे पाते हैं FII इन्वेस्टमेंट को। पहले FII का पैसा जब आता था या जब जाता था उसके हिसाब से बाज़ार में काफ़ी भारी उतार चढ़ाव देखा जाता था, लेकिन अब एक उसका स्टेबलाइजिंग फैक्टर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बन गए हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास से पैसा और किसी का नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स का ही है, जो SIP के माध्यम से आज की डेट में करीब 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह जो एक स्टेबिलिटी के साथ भारतीय बाजार में लगता चला जा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा काउंटर वेट प्रदान करता है FII के उतार चढ़ाव को।
2: आशुतोष, वील कम बैक ऑन दैट। मीनवाइल लेट्स आस्क पंकज फ्रॉम कोलकाता व्हाट्स हिज क्वेश्चन।
0: पंकज, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: नमस्कार।
0: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने करीब 2 साल पहले SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड नाम से मैंने उसमें SIP स्टार्ट किया था, तो करीब 2 साल पहले, 2 साल से मैं चला रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो है मतलब कुछ रिटर्न कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है, तो क्या ये सही टाइम है कि मतलब अभी निकल जाऊं या अभी हमें वेट करना चाहिए?
1: देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आपने आपको इस पैसे की अगर अगले 1-1.5 साल में ज़रूरत पड़ने वाली है तो बिल्कुल आप निकल जाइए, क्योंकि ये टाइम होराइजन इक्विटी डोमिनेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिस्की हो सकता है, इतनी छोटी अवधि के लिए नहीं बने। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया था रिटर्न बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो इतनी जल्दी आप निराश होकर मार्केट से जाएं, मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा। पिछला 1-2 साल मार्केट्स के लिए जनरली डिसअपॉइंटिंग रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि पिछले 5-7 साल में जिस टाइप के मार्केट ने रिटर्न दिए थे और जिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ पिछले 1-2 साल में जो नए निवेशक बाजार से जुड़े, तो पुराने रिटर्न के मुकाबले उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फेस रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिसअपॉइंटमेंट की ऐसी कोई खास वजह है। आप इन इन्वेस्टमेंट्स को समय दीजिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस सबसे ज़रूरी है, तो मेरी राय में आप बने रहिए।
0: जी, अगले कॉलर है चेन्नई से सेतुपति, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: या गुड इवनिंग सर, कंप्लीटिंग, दिस इज रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आई एम नॉट आस्किंग पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, हाउ मच परसेंटेज आई कैन इन्वेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, इफ पॉसिबल नेम द इंडस्ट्रीज, थैंक यू।
1: आई एम अफ्रेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से पुट अ स्पेसिफिक परसेंटेज एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, यू नो, सिंस दिस शो इज स्पेसिफिक टू म्यूचुअल फंड्स, आई वुड से दैट इज अ होल आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, दैट दीज काइंड ऑफ क्वेरीज और दीज काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन वेरी कन्वीनियंटली लीव टू द एक्सपर्टीज ऑफ अ फंड मैनेजर। एट ऑन योर एंड यू शुड ओनली चूज a handful of good diversified long term wealth creating equity funds which have had a good and consistent track record of delivering a strong performance. These could be from the categories of flexi cap, multi cap, value, and let the fund manager decide what kind of allocations should go to which sectors and when.
0: वैसे क्या भारत में सेमीकंडक्टर्स के लिए कोई अलग फंड है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ?
1: जी नहीं, अभी इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसे भी भारतीय बाजार में बहुत ज़्यादा आपको मिलती नहीं है लिस्टेड यूनिवर्स में, तो इस थीम के स्पेसिफिक आपको कोई फंड अभी नहीं मिलेगा।
0: जी, एक और सवाल था आशुतोष, अभी जो कई बार हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं और कई बार हमारे कई श्रोता और जो छोटे निवेशक हैं, जैसे अभी भी एक सवाल था, कुछ कई बार ऐसा होता है कि हमने निवेश किया था किसी फंड में और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि उसका नाम बदल गया है या कैटेगरी बदल गई है। जैसे कोई इक्विटी एंड डेट फंड था पहले अभी, और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि वो एग्रेसिव हाइब्रिड हो गया है, तो क्या हमने जिस समझ के साथ उसमें निवेश

0: करना शुरू किया था, क्या हमें उस पर विचार करना चाहिए फिर से, क्योंकि क्या वो अग्रेसिव हाइब्रिड मेरा रिस्क बढ़ा देता है?
1: तो देखिए, नाम अगर चेंज हो रहा है फंड का लेकिन काम नहीं बदल रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ वर्षों पहले सेबी ने स्टैंडर्डाइज़ करी थी कैटेगरीज़, और फंड्स को ये निर्देश भी दिए गए थे कि सबके नाम उस कैटेगरी से अलाइंड होने चाहिए, जिससे निवेशकों को ये क्लियर पता चले कि वो किस टाइप के फंड में निवेश कर रहे हैं, उसका क्या रिस्क रिटर्न पे ऑफ होगा। तो उस एक्सरसाइज के रिजल्ट में काफ़ी फंड्स ने अपने थोड़े नाम चेंज किए थे। तो अगर फंड का सिर्फ नाम बदल रहा है तो मेरा ख्याल उससे आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक इन्वेस्टमेंट नीड के लिए सोच समझकर एक फंड में इन्वेस्ट किया था, और अगर वो वही काम करता चला जा रहा है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कैटेगरी चेंज का मतलब है कि उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है, एक जैसे इक्विटी एंड डेट फंड जो एग्रेसिव हाइब्रिड में उसका नाम तब्दील हुआ, तो वो फंड काम अभी वही कर रहा है, 75% के करीब पैसा आपका इक्विटी में लगाता है, बाकी पैसा आपका डेट में लगाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वही कॉन्टिन्यूटी, वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, वही पे ऑफ्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर नाम चेंज के साथ साथ फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है तो आपको ध्यान देना होगा, और आपको देखना होगा कि क्या नई कैटेगरी में वो आपकी वही इन्वेस्टमेंट नीड्स को फुलफिल करने में फंड अभी भी सक्षम है या नहीं है। और आमतौर पर ये होता है कि जब भी फंड अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज करता है, अपनी कैटेगरी चेंज करता है, तो फंड इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन देता है कि बिना एग्जिट लोड चार्ज किए उनको उस फंड से एग्जिट की ऑप्शन हमेशा प्रोवाइडेड रहती है। शुरू के कुछ हफ्तों में कुछ 30 डेज का या कुछ इस टाइप का विंडो दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। तो अगर वो फंड आपके लिए अब सूटेबल नहीं है नई इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में, तो आप उससे एग्जिट करने का निर्णय लेकर ज़्यादा सूटेबल फंड में मूव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नाम चेंज की वजह से मेरा ख्याल आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है।
2: Ashutosh, I've been listening to you very carefully, and in these last 20 minutes, you've given us good piece of advice. So taking cue from just what you've been saying, no doubt, returns of a mutual fund are a guiding criteria. But when it comes to choosing a mutual fund, how important is it to analyze your time horizons, financial goals, your own personal risk appetite? What's your expert comment on this?
1: It is the foremost, because fund selection comes later. The first thing is which type of fund is suitable. Often the start of any conversation is tell me the best fund, but the idea is first you should focus on getting the right type of investment fund for you. And then, you know, the right fund, the question of the best fund comes later, because every fund, there are it's a very wide spectrum of funds which is available.
2: Correct.
1: Which diverge significantly in their risk return, you know, payoffs or the risk return promise that they provide to the investors. So it's very important that the fund you choose aligns well with your risk appetite, your investment horizon, the investment need that for which you are wanting to invest. And once you've zeroed down on the right category of funds, only then you go down to picking one or two suitable funds from those categories and going ahead with your investment.
0: जी, और देखते हैं कि सोने और चांदी का क्या हाल रहा है। सर्राफा बाज़ार में सोने और चांदी की कीमतों में 3 सप्ताह से जारी तेज़ी का सिलसिला थम गया। जैक्सन होल संगोष्ठी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वार्श के आक्रामक रुख वाले पहले भाषण के बाद कीमतों पर दबाव बढ़ा। उम्मीद से अधिक अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और मजबूत अमेरिकी डॉलर ने भी निवेशकों के रुख को प्रभावित किया। एमसीएक्स पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.8% गिरकर 156,281 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी 4% फिसल कर 236,704 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.2% से अधिक गिरकर $4,494.70 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुआ, और सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 3.6% से अधिक गिरकर $66.99 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुई।
2: और आइए पूछे कृपा शंकर जी से उनका सवाल।
3: हेलो, नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार।
3: हेलो,
2: हाँ जी, सवाल पूछे।
3: हाँ, मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो

0: प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.2% से अधिक गिरकर $4,494.70 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुआ और सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 3.6% से अधिक गिरकर $66.99 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुई।
1: और आइए पूछे कृपा शंकर जी से उनका सवाल।
2: हेलो नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार।
2: हेलो।
1: हाँ जी सवाल पूछे।
2: हाँ मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो बच्चा है 12 साल का, उसके लिए अगर म्यूचुअल फंड हम आगे के लिए रिमेन करना चाहें तो किस ढंग से इसका प्रोसीजर है और हर महीने कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से तो जितना भी डाल सकते हैं तो होता ही है, तो इसका प्रोसीजर बताइए कि बच्चा 7th क्लास में है, 12 साल का है बच्चा है, तो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं आगे के लिए, कब तक वो हम उसको हर महीने कितना कितना, क्योंकि इसकी न्यू कस्टमर की जानकारी नहीं है हमारे।
3: जी तो मिनिमम निवेश आजकल म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी कम, कुछ फंड्स में तो आप ₹100 प्रति माह भी मिनिमम इन्वेस्ट कर आप SIP कंटिन्यू रख सकते हैं। काफ़ी सारे फंड ₹100 या ₹500 से शुरुआत आपको प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तो आप अपने अमाउंट को इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अलाइन कर चूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही कि निवेश किस तरह करें, तो देखिए आप बच्चे के नाम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक गार्डियन चाहिए होता है, जो गार्डियन का पैन का इंफॉर्मेशन लगता है और आप गार्डियन अंडर गार्डियनशिप बच्चे के नाम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 18 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उन पर फ्रीज लग जाएगा जब तक आप वो यूनिट्स बच्चे के नाम में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। थोड़ा ये मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो मेरी सलाह मानिए तो आप एज गार्डियंस पेरेंट्स आप अपने ही अकाउंट से बच्चे के लिए निवेश करें और बच्चे को चाहे आप नॉमिनी बना दीजिए उस इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट्स पे आपका ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, कोई 18 साल की उम्र के बाद कंपल्सरीली उनको ट्रांसफ़र करने की आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, तो आप अपने नाम से ही मेरे हिसाब से निवेश अभी शुरू कर सकते हैं और उसको इन्वेस्टेड रखें, और बाद में आप कॉल ले सकते हैं कि आपको किस तरह ये यूनिट्स को ट्रांसफ़र करना है या उनको उसी तरह कंटिन्यू रखना है।
0: जी बच्चों की बात आई तो कई बार देखते हैं हम कि जो अपने 18 साल की लिमिट है तो 20-21 साल के जो युवा हैं हमारे और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि कुछ पॉकेट मनी से या कुछ पार्ट टाइम काम करके कहीं कुछ कमाया और SIP का शौक आजकल इतना है या इन्वेस्टमेंट का शौक इतना है या अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि वो भी चाहते हैं कि हम इसमें निवेश करें। क्या इसके लिए निवेश करने पर कुछ उन्हें फिर टैक्स फाइल करना ज़रूरी हो जाता है या कुछ इस तरह की कोई बाधा तो नहीं आती उनके?
3: जी अगर कभी रिडम्पशन हो रही है और कोई कैपिटल गेन एक्रू हो रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, लेकिन अगर आप वैसे निवेशित हैं आपको अदरवाइज अगर आपको इनकम आपकी इतनी नहीं है या आप रिटर्न फाइल करने से अदरवाइज एग्जेम्प्ट हैं तो ऐसी कोई बाधा आपके लिए
0: कोई बाध्यता नहीं है इसमें।
1: जी आशुतोष जी, सिंस वी आर ऑन द जेन जी, सो इन दिस फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड हाउ हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चेंज्ड द पिक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एज फार एज द यंग जनरेशन इज कंसर्नड?
3: सो आई'ड से नॉट जस्ट फॉर द यंग जनरेशन बट अक्रॉस द बोर्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव ग्रेटली डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन टू मेक एन SIP यू हैड टू गिव पोस्ट डेटेड चेक्स। When I started investing about 20-25 years back, at that time you did not have a facility to create an e-mandate, an e-NASH mandate through which your SIPs would be deducted every month. My first SIP was through post-dated checks. So I set up an SIP for 12 months and I had to give 12 checks. But things have moved, at a rapid pace from there on. It is not just, it is the evolution of the entire ecosystem. It is not just about the platforms that have come up, but your KYC formalities now can be done completely through DigiLocker, through Aadhaar. All these facilities are completely digitized, and in about 15 minutes time you can set up your account from scratch and make your first investment. So of course, it connects much more with the younger generation because they've started with everything digital. But even for elder investors, for senior citizens who are comfortable doing it digitally, it's a great enablement.
1: All right, the Reserve Bank of India's special swap facility for foreign currency

0: non-resident bank FCNRB deposits will be available for deposits mobilized until 31st August. The Reserve Bank introduced the special USD-INR forex swap facility covering FCNRB deposits, external commercial borrowings and overseas foreign currency borrowings on 8th of June with a view to strengthen India's balance of payments and incentivize capital inflows. Meanwhile, we have another caller from Delhi. Vinod ji, sawal puche.
1: पूरी मार्केट मंत्रालय टीम को मित्र से नमस्कार
0: जी नमस्कार
1: मैं आशुतोष से पूछना चाहूंगा कि जब मैं जैसे कि पिछले साल से मैं रिटर्न कुछ नहीं आया मैं म्यूचुअल फंड से लेकिन हम इन रियल एस्टेट की इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं कि इस इन्फ्लेशन को बीट करने के थैंक यू
2: तो देखिए मेरी राय में जो सबसे पोटेंट तरीका मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट इक्विटी एज एन एसेट क्लास के पास शायद सबसे ज़्यादा सक्षमता है लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने की और एक जेन्युइन वेल्थ जनरेट करने की आजकल आपने रियल एस्टेट बोला रियल एस्टेट का देखिए टिकट साइज़ बहुत ज़्यादा है और उसके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं बहुत सारे इनविजिबल एक्सपेंसेस भी रियल एस्टेट में होते हैं क्या सच में आप एक अच्छा रिटर्न बना पाते हैं कि नहीं मेरा ख्याल है केस बाय केस डिपेंड करेगा बट आजकल रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेने के लिए रीट्स के तौर पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से एक अच्छा साधन उभर के आ रहे हैं अभी बहुत सारे रीट्स मार्केट में नहीं है लेकिन सेबी काफ़ी जागरूकता इसके लिए ला रही है प्रयास किए जा रहे हैं कि रीट्स को भी एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बनाया जाए रियल एस्टेट में इन एक रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्ट करने का एक आम निवेशक के लिए जरिया मेरा ख्याल बनने का काफ़ी काफ़ी संभावना है काफ़ी पोटेंशियल है रीट्स में तो एक रीट्स एक आप दूसरी एसेट क्लास है जिसको आप इस लिहाज से देख सकते हैं
0: Well, now let's take a peep into how the markets are expected to show up next week. Domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including macroeconomic data, foreign institutional investor flows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor the first quarter gross domestic product GDP estimate for the current fiscal year, scheduled to release tomorrow. The index of services production data will also remain in focus. Investors will also monitor manufacturing and services purchasing managers index, PMI readings, GST collections, and forex reserves.
3: जी, आज वक्त इतना ही है आशुतोष कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी धन्यवाद
0: Listeners, a reminder of the headlines. India and Uzbekistan elevate ties to comprehensive strategic partnership, set bilateral trade target of $5 billion by 2030. Foreign portfolio investors infuse over 30,000 crore rupees into Indian equities in August so far. And in bullion market, gold and silver prices snap 3-week rising streak. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
6: நேரம் 11:40 ஆகாஷ் வாணி சென்னை வானொலி நிலையம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் அடுத்து ஒலிவிழா வருவது திரைகானம் முதல் பாடல் நான் அவனில்லை படத்திற்காக பி ஜெயச்சந்திரன் எல்ஆர் ஈஸ்வரி பாடியுள்ள பாடல்

what happened to her?

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।

0: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। देश भर के 18 NIFT कैंपस से स्नातक होने वाले विद्यार्थी अपनी डिग्री मिलने और संस्थान में अपनी अकादमिक यात्रा के समापन का उत्सव मनाने के लिए एक साथ आएंगे। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। थाईलैंड की ओर से नानापत कोचारोइनकाई ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said

0: இரவின் மடிகள் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை லவ் பேர்ட்ஸ், பூவரசன், தடயம் ஆகிய படங்களில் இருந்து பாடல்கள் கேட்டோம். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கிரண் சர்மா. भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम के दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान

0: का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमरीका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memorandum of Understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliy Darajali Dostlik, by President Shavkat Mirziyoyev. Mr. Modi reached in Tashkent on Saturday on a two-day visit to Uzbekistan. After concluding his visit, Prime Minister Modi arrived in the Kyrgyz Republic to participate

0: நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை ஹலோ மிஸ்டர் ஜமீன்தார், வல்லவனுக்கு வல்லவன், வீர அபிமன்யு, அன்பு கரங்கள் ஆகிய படங்களில் இருந்து பாடல்கள் கேட்டோம். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है।

0: आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी क्षमताओं, कुशल श्रम शक्ति और बढ़ती नवाचार पारिस्थितिकी पर भी बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पाली खेली। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: The two leaders witnessed the exchange of 11 Memorandum of Understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oli Darjali Dustilig by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday. In his address, the Prime Minister strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. Defence Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defence sector and witnessing a major transformation in its defence industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Setu Industry Conclave at Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, combined convocation.

0: கேட்ட நிகழ்ச்சி நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली डराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ से के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

0: वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। श्रीमती सीतारामन ने शिकागो में चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। अब भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: The two leaders witnessed the exchange of 11 memorandum of understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oli Darjali Dustilig by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani. In his address, the Prime Minister strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27, continuing the momentum recorded in the years since the COVID-19 pandemic. Addressing the Indian diaspora in Chicago during her U.S. visit, she said that India was likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainties and supply chain disruptions following the U.S.-Iran conflict and the closure of the Strait of Hormuz. President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026 in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will come together to celebrate the conferment of their degrees and mark the culmination of their academic journey. Union Minister of Textiles, Giriraj Singh, will also be present on the occasion. Nepal has issued a fresh flood alert for the Bhote Koshi River after a rise in its water flow. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority of Nepal has urged residents along the riverbanks in Rasuwa, Nuwakot and Dharding districts to remain cautious.

0: अभी आप सितार पर राग मिश्र गारा सुन रहे थे। कलाकार थे सुविख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद करामतुल्लाह खान।
1: Listen to a sitar recital in rag Mishra Gara.
2: ஒலிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து சித்தேஸ்வரி தேவி அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம்.

0: இனிய ராகம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கிரண் சர்மா. भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। राहत और बचाव दल ने कल 5वें दिन भी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। दुबई में

0: भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा तथा पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पढ़ाई के लिए उज़्बेकिस्तान जाने वाले भारतीय युवाओं के हितों और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज़्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा भी किया। उज़्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से अब संपर्क हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अमरीका के दक्षिण कैरोलिना पहुंची। वे एशविले में होने वाली G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने सरकार पर उधार और कर्ज के स्तर से जुड़ी चिंताओं पर बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। शिकागो प्रवास के दौरान वित्त मंत्री ने कृषि, रक्षा प्रौद्योगिकी और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख अमरीकी उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हरा दिया है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा कर कांस्य पदक जीता था। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता।